0: Let's start this Monday morning with a major development that's taken place as far as Twisha death probe is concerned. The bail plea of her husband, Samar Singh, has been rejected by the court as a probe into the death of Twisha under unnatural circumstances has picked up pace. It is Samarth, the advocate, who continues to be absconding. There is a 10,000 rupee reward that has been announced for him. His passport has been cancelled, and as far as the cancellation proceedings are concerned, those have been initiated, so it's going to take a little while. Meanwhile, we have Twisha's family that has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. In fact, they are wanting that the autopsy should be conducted in Delhi at the AIIMS hospital and not at the AIIMS hospital. That was the first autopsy that was conducted at the AIIMS hospital in Madhya Pradesh. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching those marks on Twisha's neck. And of course, the family now demands that the body should be transferred to Delhi for that monitoring. And of course, this is the demand that's been made by the family. They're saying that we want justice and we want another autopsy. That's what the family is now wanting.
1: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, आपका स्वागत है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा के डेथ को लेकर. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर. वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़. मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा तो वापस आना चाहती
2: थी कि जिसमें बेड़िया
1: जी
2: आती थी, आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है। सर दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
2: नहीं नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई, मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
0: That was the father of Twisha speaking to Shivarur of NDTV. But what is the other side saying? The mother-in-law of Twisha has blamed Twisha, claiming that the puja part conducted at home was merely a show. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called Samar to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms while taking medicines, and her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. That is what they're saying in their defense.
3: Dard hame hota hai because today their parents, they think we are, you know, criminals. The press, the media, everything has gone against us.

0: वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स. वेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो. मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर.
1: Switching tracks now, after Prime Minister Modi's 5-nation visit, he's back, and his retrieval of the medieval Jola plates has now caused politics that have erupted here back home. Criticizing the ruling, as far as the TVK government is concerned, the BJP state president has hit out at the Chief Minister Vijay for staying silent on the return of the centuries-old copper plates from Netherlands, and alleged that the Tamil Nadu government is devoid of Tamil pride. The Chola plates date back to the, you know, Chola reign 1,000 years ago, and the plates were used to ink state records and serve as proof of civilizational heritage. And staying with news from Tamil Nadu is the Amma canteens that are set for a major facelift. Well, that's the order passed by the new Chief Minister Vijay just within 10 days of taking office. He's ordering an immediate statewide revamp. According to the Tamil Nadu CMO, it is the officials that have been directed to begin renovation work, and that's going to start instantly so, and replace damaged utensils, outdated kitchen equipment, improve the food quality, as well as the operational standards. The move comes after complaints regarding the quality and the taste of food offered at those very canteens. The low-cost meal scheme was launched during the AIADMK government back in 2013. The canteens offering subsidized food were an instant hit. Currently, there are about 620 functional canteens across the state of Tamil Nadu. And from Tamil Nadu, let's switch tracks to Karnataka. Amid the rising temperature over the tussle, which continues as far as the chief ministerial role is concerned between Siddaramaiah and D.K. Shivkumar, now we also have senior Congress MLA K.N. Rajana, who has said that it's the Home Minister, Parmeshwara, who should be made the Chief Minister of Karnataka if incumbent Siddaramaiah is replaced in a leadership change in the state. The former minister claimed that the Home Minister served as the party's state president for about 8 years. Had he won the 2013 assembly elections, he would have become the Chief Minister then itself. That is what Rajana had to say.
2: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು. ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ? ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು 13ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋರು. ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಈಗ ಅದು ಹಳೆ ಕೂಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನಾ? ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಆಸ್ತಿನೋ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ.
1: And with that, we're slipping into a very short break. On the other side, we'll get you Donald Trump putting a hold as far as those planned strikes against Iran is concerned. Why? Because the Gulf countries have requested. We're going to get you details on the other side.

0: Let's start this Monday morning with a major development that's taken place as far as Twisha death probe is concerned. The bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court as a probe into the death of Twisha under unnatural circumstances has picked up pace. It is Samarth, the advocate, who continues to be absconding. There's a 10,000 rupee reward that has been announced for him. His passport has been cancelled, and as far as the cancellation proceedings are concerned, those have been initiated, so it's going to take a little while. Meanwhile, we have Twisha's family that has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. In fact, they're wanting that the autopsy should be conducted in Delhi at the AIIMS hospital and not at the AIIMS hospital. That was the first autopsy that was conducted at the AIIMS hospital in Madhya Pradesh. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching those marks on Twisha's neck. And of course, the family now demands that the body should be transferred to Delhi for that monitoring. And of course, this is the demand that's been made by the family. They're saying that we want justice and we want another autopsy. That's what the family is now wanting.
1: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ke death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में. हमने फिर अप्रूवल दिया है और साथियों मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज अ केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
2: जिसमें भेड़िया
1: जी जी जी, जी
2: आती थी आती आना चाहती थी सर। ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
2: नहीं पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
0: That was the father of Twisha speaking to Shivarur of NDTV. But what is the other side saying? The mother-in-law of Twisha has blamed Twisha, claiming that the puja part conducted at home was merely a show. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called Samar to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms while taking medicines, and her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. That is what they're saying in their defense.
3: Dard hame hota hai because today their parents, they think we are, you know, criminals. The press, the media, everything has gone against us. इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती है, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज योर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को ज़रूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं, पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मैनी थिंग्स आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर, शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
0: Switching tracks now, after Prime Minister Modi's 5-nation visit, he's back, and his retrieval of the medieval Jola plates has now caused politics that have erupted here back home. Criticizing the ruling, as far as the TVK government is concerned, the BJP state president has hit out at the Chief Minister Vijay for staying silent on the return of the centuries-old copper plates from Netherlands, and alleged that the Tamil Nadu government is devoid of Tamil pride. The Chola plates date back to the, you know, Chola reign 1,000 years ago, and the plates were used to ink state records and serve as proof of civilizational heritage. And staying with news from Tamil Nadu is the Amma canteens that are set for a major facelift. Well, that's the order passed by the new Chief Minister Vijay just within 10 days of taking office. He's ordering an immediate statewide revamp. According to the Tamil Nadu CMO, it is the officials that have been directed to begin renovation work, and that's going to start instantly so, and replace damaged utensils, outdated kitchen equipment, improve the food quality, as well as the operational standards. The move comes after complaints regarding the quality and the taste of food offered at those very canteens. The low-cost meal scheme was launched during the AIADMK government back in 2013. The canteens offering subsidized food were an instant hit. Currently, there are about 620 functional canteens across the state of Tamil Nadu. And from Tamil Nadu, let's switch tracks to Karnataka. Amid the rising temperature over the tussle, which continues as far as the chief ministerial role is concerned, between Siddaramaiah and D.K. Shivkumar, now we also have senior Congress MLA K.N. Rajana, who has said that it's the Home Minister, Parmeshwara, who should be made the Chief Minister of Karnataka if incumbent Siddaramaiah is replaced in a leadership change in the state. The former minister claimed that the Home Minister served as the party's state president for about 8 years. Had he won the 2013 assembly elections, he would have become the Chief Minister then itself. That is what Rajana had to say.
4: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು. ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಇಂಟೋಶ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ? ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು 13ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋರು. ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಈಗ ಅದು ಹಳೆ ಕೂಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನಾ? ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಆಸ್ತಿನೋ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ.
0: And with that, we're slipping into a very short break. On the other side, we'll get you Donald Trump putting a hold as far as those planned strikes against Iran is concerned. Why? Because the Gulf countries have requested. We're going to get you details on the other side.
5: ...21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
5: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
7: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
5: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
8: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji. To all the people, we are with you.
10: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
11: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory. Being depicted.
12: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
13: ओडिशा का है. महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
14: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
15: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
16: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
17: India's unshakable news habit. NDTV.com. is India's number one English news website.
18: What's the drama?
19: Full of these people.
18: Kolkata tram.
19: The highest number of voters.
18: Tamil Nadu votes decisive.
20: Tafra-tafri ka mahal hai. Udhampur patrao kya gaya hai.
21: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
22: TVK headquarters here.
23: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
24: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
25: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
21: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
26: Happy meeting NDTV team here.
27: Thanks for NDTV.
28: Padmija Joshi.
29: Shreyashi Dev.
30: This is Shreya Ghosh.
31: Ratnadeep Chaudhary.
32: Manoj Yalowiwal.
33: Deepak Bopanav.
34: This is Viktik.
35: Tanushka Datta.
36: Sam Daniel.
37: Vika Ramaswamy.
38: Ritu Rajpurohit.
39: Shiv Arur.
40: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
0: Big news coming in, and this is President Trump. They're holding off military strikes on Iran as planned because of serious negotiations that are underway. Trump's made that announcement on his social media platform and says that he had threatened the clock was ticking for Iran to strike a deal or fighting would renew after that fragile ceasefire. In fact, Donald Trump's big warning to Iran, saying they're not open to offering any kind of concessions and Iran wants to make a deal and they want to make it very badly, more than ever before, is what Trump is now claiming. We have Pradeep Datta, my colleague, joining us. But before that, listen in to what Trump had to say.
41: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Now, we're ready going tomorrow very big. And not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon.
0: Cannot let Iran have a nuclear weapon is what Donald Trump was just heard saying. Pradeep Datta, my colleague, joining us. Pradeep, this major attack on Iran has been held off. Why? Because it's the Gulf countries that have made that request. Take us to the details.
42: Yes, Divya, for the last 48 hours, we have seen that Donald Trump was having a meeting with the national security officer. They were planning to, you know, once again resume the military strikes on Iran. And now he has come out with this statement on the social media platform saying that it was some of the countries like UAE, Qatar and Saudi Arabia. They approached him and asked him to hold the strike for a while because they are somewhere close to strike.

0: had in September or October, he may not have raised these prices. Now Uttar Pradesh elections are 8 months before, and our memory is Indian public memory is not long lasting, therefore he is using this kind of thing and punishing those people who had voted for them in Bengal, who had voted for them in Assam.
1: Sir, you feel that the election result would have been any different had this price hike happened before the elections?
0: Surely it would have been different, because price rise would have become a major issue. Therefore only Mr. Modi always does this kind of jumlas. He controls these prices and make these all this kind of trade-offs, whatever he's making it, which doesn't suit with the realities. And we all know that if elections would have been there, you would not have increased the prices itself.
1: Right,
0: I can say to you very clearly, till December he will be raising it, and after December he will not raise that price.
1: Right, we're seeing a second price hike in 4 days' time. Thank you so much, Malcolm Tagore of the Congress Party, to speak with us here on NDTV. Akhil, back with us. Akhil, taking us through, how is this hitting the common man? How is the poor man supposed to deal with the second price hike in a matter of 4 days? 3 rupees price hike that we saw on Friday the 15th, and now on the 19th, we're seeing the prices increase by almost a rupee. We're talking about 91 paise increase as far as petrol is concerned. Here in Delhi itself, 98.64 a litre for petrol. Akhil, do the math for us. What was the price just before all this hike that we've seen over the last 4 days?
2: Well, Divya, if you see earlier, what we have seen that on Friday, there was a sudden increase of approximately 3 rupees on diesel and petrol prices. And right now, I'm going to move forward and show you the meter over here. This petrol pump where I'm standing right now in Mayur Vihar area of East Delhi. Here you can see this was the previous price, 97.77 paise. So this was 97 rupee and 77 paise. And if you see the new price over here, the hiked price over here is 98 rupees and 64 paise. I'm joined by one of the early commuters over here this very morning. I'm going to speak to some individuals over here, get some voices on the ground. Achha, mujhe ye bataiye, kya naam hai aapka?
3: Mahendra Vishnoi.
2: महेंद्र जी, इस वक्त आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हैं, क्या आपको रात में पता चल गया था कि पेट्रोल का दाम फिर से 1 रुपये के आसपास बढ़ गया?
3: नहीं, मेरे को नहीं मालूम पड़ा था. ये मालूम है कि 3 रुपये बढ़ गया था, 1 रुपये जो बढ़ा है मेरे को अभी नहीं आइडिया है.
2: अच्छा, ये फ्राइडे को बढ़ा था 3 रुपये, उसके बाद आज जो है फिर 1 रुपये के आसपास बढ़ गया. 91 पैसे एग्जैक्टली बढ़े.
3: मेरे को नहीं मालूम ये
2: कितना फ़र्क पड़ रहा है एक आम मिडिल क्लास की जनता पे, उनके पॉकेट पर कितना असर.
3: इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अवेलेबल अगर पेट्रोल रहे, डीजल पेट्रोल रहे, लेकिन आने वाले टाइम हो सकता है कि अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट का चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी लॉकडाउन कर दिया जाए.
2: इतनी सुबह सुबह जो है आप कहाँ ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं या फिर बिजनेस की तरफ?
3: जा रहा हूँ मैं.
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, है ना, किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ा?
3: नहीं, कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है. जो मेट्रो में भी मैं बीच बीच में मेट्रो में जाता हूँ मैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है. हाँ, 2-4-5% का पड़ा होगा. जो लोग समझदार लोग होंगे वो लोग जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे अपने ऊपर ही, कि जिससे मेरा मन नहीं होता है कि भाई कार से नहीं जाना है, मैं जाता हूँ. मोदी के हिसाब से नहीं कि भाई मोदी के हिसाब से मैं जाता हूँ, मेरा अपना मन होता है तो मैं मेट्रो से जाता हूँ.
2: सो आई एम गोइंग टू गेट मोर वॉइसेस ओवर हियर. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, आप जो है आप यू आर द आइज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड, है ना, आपको सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आमतौर पर जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ रह रही है आजकल भी, या फिर कम हो गई है पेट्रोल कम?
4: नहीं, भीड़ तो तकरीबन वैसी ही रह रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा.
2: लोग आते हैं उसी तरह?
4: हाँ, लोग आते हैं, मगर वही कहते हैं कि रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे.
2: बोलते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, है ना?
4: बिल्कुल.
2: अच्छा, ये बताइए, जब अभी फ्राइडे के रोज़ जब रेट बढ़ा था 3 रुपये के आसपास, उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आह्वान लगाया था लोगों से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो असर कुछ दिखा था लोग?
4: नहीं, ऐसा कोई असर नहीं दिखा.
2: बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर?
4: नहीं जी, ग्राउंड पर कोई असर नहीं है. भीड़ उतनी है, पब्लिक उतनी आ रही है जितनी आती है.
2: So here you see, let me just move forward and try to speak to some more individuals who are coming over at the very petrol pump. We'll try to get more voices on the ground. Could you please just... Yes, thank you. May I know your name, please? Kya naam hai?
5: Harshi.
2: Petrol ka daam 1 rupaye phir se takriban badh gaya hai, 91 paise badh gaya hai. Pata chala tha aapko?
5: Nahi.
2: Acha, abhi pata nahi hai. Acha, morning shock lag raha hai. Friday... पैसा फिर बढ़ गया अभी आप जैसे

0: AIIMS Delhi number 1. Apart from that, the family also wants a special investigative team to be made, who will be in fact investigating the case. And in fact, the case should be heard, the proceedings should continue here in the national capital, because the family of Trisha believes that, you know, Samarth and his family members are quite influential there in Bhopal's Madhya Pradesh. And perhaps that is why it could hamper the case as well. There are several questions that are raising eyebrows according to the kind of events that have unfolded after Trisha's death. Yesterday, in fact, remember that a press conference was also held by Trisha's mother-in-law, that in fact, she in fact again alleged that Trisha was under the influence of some kind of drugs. She was also not mentally stable. She used to get some kind of treatment, some psychological treatment is what she stated, and also in fact raised several questions on her behavior and personality as well. If we talk about Trisha's parents and the family members as well, they held, some of the family members in fact, you know, held a protest at Janta Mandir. We did cover and spoke to them, and in fact they also stated that how Trisha was continuously tortured, and she was subjected to mental torture and at times of physical abuse as well. But given the condition as of now, they have stated that as of now, they're not going to accept the body till the time their demands are not fulfilled by the administration. Back to you.
1: Right. Well, Tejasri, let's just listen in to what the family had to say. Her father spoke with Shivarur.
2: Navnidhi Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Trisha ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला, और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब?
2: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
3: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादीनों मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
3: देखिए, आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया, और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको, उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए सामने?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है, इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
2: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
3: जिसमें भेड़िया
2: जी जी जी
3: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
3: नहीं पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
1: Well, that is the father saying that Trisha was pushed at the airport when they were taking off for their honeymoon itself. What is the mother-in-law saying? The family of the husband is saying that the mother-in-law is saying that there is a puja part that was being conducted at the home and that was just a show. That is the claim that is being made by the mother-in-law. She alleged that Trisha had taken an abortion pill and had personally called Samarth in order to inform him about it after consuming that pill. According to her, Trisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist, attend counseling sessions. She also said that her hands would shiver, she had withdrawal symptoms, hinting towards the consumption of drugs. Her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps. That is the allegation being made by her mother-in-law.
4: उसके जब ही इसने MTPS अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज दो तीन दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट MTP पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे, एंड आई सेड लुक यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जेनरेशंस का निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस।
1: Now, a 33-year-old woman's desperate messages that were sent to her family, allegations of

0: each one of us, middle class, poor women, travel, daily wages, MSME sector, working women, everybody is going to be affected. It is an irresponsible act by the government. We all know that whenever election comes, only Modi will care about prices. We pray that the Uttar Pradesh elections, maybe if it is little ahead in September or October, he may not have raised these prices. Now Uttar Pradesh elections are 8 months before, and our memory is Indian public memory is not long lasting. Therefore, he is using this kind of thing and punishing those people who had voted for them in Bengal, who had voted for them in Assam.
1: देखिए ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि पांच राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया, और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। अब उस समय कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यह 1 रुपया बढ़ाया गया। वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ाएंगे दाम इसका पता नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं, जनता को उपदेश दे रहे हैं, विदेश नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है, ईंधन बचाना है। कौन सा मंत्री, कौन सा बीजेपी का नेता, कौन ऐसा है जो उनका पालन हो रहा है?
2: This price hike is the pattern. Just before the elections, they won't hike the price, and immediately after the elections, they will hike the price. This is the pattern for the last 5 or 6 elections. And I know if you inject a poison with a huge quantity, the patient will be dead. So they are injecting the poison little by little, so that we will get immunity. But nonetheless, this is poison. And that is why, that is the same thing the BJP government is now following. If you increase it by, say, 10 or 15 rupees, it will be, there will be protests on the street. That is the reason, slowly, every day, they are increasing.
3: Yesterday, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri had also addressed this entire crisis and spoken regarding the fuel price hike and the price rise in general. Here's what he had to say.
4: तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं। और अभी आप लोग, मेरे भाई लोग बैठे हैं, वो सी क्या, वो एक तो गैस का प्राइस बढ़ाया था एक कुछ महीने पहले, तो मैंने कैलकुलेशन की कि अगर एक परिवार एक सिलेंडर को 3 महीने में इस्तेमाल करता है तो 60 रुपए बढ़ने से तो एक दिन में कितना, 2 रुपए, 1 रुपया उसका बढ़ाया। तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए अगर हो सके, पर अभी समय, इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ का एक दिन में ओएमसी जो है वो लॉस हो रहा है।
3: Meanwhile, yesterday, Defence Minister Rajnath Singh has spoken regarding the fuel price hike as well, and how for the past 4 years, the price of petrol and diesel has not increased by even a single penny. He said only recently have they been raised, I beg your pardon, and that too by a very nominal amount. Here's what Mr. Singh had to say.
5: Petrol, diesel ki kimaton ka yahan tak prashn hai, aapne dekha hoga ki West Asia ki crisis paida hone ke bawajood, West Harbour se बहुत सारी हमारी ऑयल की सिर्फ गुजर नहीं पा रही है, फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी। मैंने पिछले 4 साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें, बहुत ही नामी 3-3 रुपये बढ़ाया गया है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए, कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
3: Well, let's switch tracks now. In a major development in the Twisha death probe, the bail

0: plea of her husband, Samaj Singh, has been rejected by the court as this probe into her death under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to be absconding with a 10,000 rupee reward announced for him and passport cancellation proceedings also initiated against him. Meanwhile, Trisha's family has expressed a demand for a second autopsy. They said that the one conducted in the AIIMS in Bhopal is not reliable. They want a second autopsy considering the sequence of events surrounding Trisha's death. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigation officer for matching the marks on Trisha's neck. The family now demands that the body should be transferred to AIIMS Delhi for a Supreme Court monitored probe and a second autopsy before the body decomposes. In fact, days after this 33-year-old Trisha Sharma was found dead at her marital home in Bhopal, her father has made a series of allegations against her husband, Samarth Singh, and his family. The husband is still absconding, as I mentioned, as the family continues to demand for justice and a second autopsy. Trisha's father has spoken to NDTV. Here's what he told us.
1: Navnidhi Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Trisha ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे. तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली. बेटियाँ

0: है ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
1: त्विशा तो वापस आना चाहती थी,
0: है कि जिसमें भेड़िया
1: जी जी जी
0: आना चाहती थी सर. ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. दे आर कैमेलियन पीपल. इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड. बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी. तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है. पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे.
1: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं, पता नहीं था. बिल्कुल नहीं पता था. उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई, मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली. मतलब तो बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था.
2: सो यंग वुमन डेड इनसाइड हर मैरिटल होम, अ हस्बैंड अब्सकॉन्डिंग, अ ग्रीविंग फादर अलेजिंग हरासमेंट एंड डिमांडिंग जस्टिस, एंड नाउ डीपली डिस्टर्बिंग वॉर ऑफ एक्यूजेशंस बिटवीन टू फैमिलीज प्लेइंग आउट इन पब्लिक, बिकॉज द मदर इन लॉ इज ब्लेमिंग ट्विशा, क्लेमिंग द पूजा पाठ कंडक्टेड एट द होम वॉज मेयरली अ शो. शी इज ऑल्सो अलेजिंग दैट Twisha had taken an abortion pill and had personally called her husband to inform him about this. The mother-in-law is making a series of allegations. Listen in.
3: Unka parivesh hamara bahut farak tha. Lekin sabar se maine jab baat ki, he said, dekho, usko achha stimulus shayad milega. To she's a bright girl, achha karegi. Yakeenan mujhe bhi aisa andesha tha, kyunki शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी. इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है. जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है. एंड वी वर हैप्पी, अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था. उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है, इट्स नॉट ट्रू. ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा, आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए. लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक पीआईएल, अपने नाम से मेरी एक पीआईएल है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है. हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं. मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्नाइटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं. शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन. जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था. इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं. फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी, यू नो, असीम संभावनाएँ होती हैं. लेकिन ये कई बार इट्स, यू नो, पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट. उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़, हमारे घर का एक हिस्सा थी. जो दर्द हमें होता है Because today their parents, they think we are, you know, criminals. The press, the media, everything has gone against us. It's very easy, bachche, ladkiyan ye step le leti, jaake jhool jati, irresponsible conduct. Ladke nahi jhool paate hain. So they're treated as criminals. To bear a child is lot of hormonal imbalances also. Maine uski mother ko phone kiya, I said, she's, you're needed now. 5 mahine mein they never came except once. जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ समर्थ इज ऑल्सो आउट कोई रहना चाहिए उसके साथ हस्बैंड को ज़रूर उनके नहीं बुलाया ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए यू वांट टू बुक योर टिकट आप आ जाइए रहिए बेटी के साथ नजीराबाद में कर क्या रहे दोनों बच्चों की शादियाँ होगी स्टे हियर शी डिडंट कम और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे आपको जो करना है धरना प्रदर्शन बट गिव हर द पीस ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर
2: ऑलराइट ट्विशा'स फ्रेंड मीनवाइल माधुरी पटेल recalls her a strong, independent person and questions the circumstances around her death, raising concerns over allegations made by her in-laws and the husband's absence and calling for an unbiased investigation to ensure justice. Listen in to what she told my colleague Shivarur.
4: Your first thoughts, your first reaction when you heard about Twisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
5: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was I was shocked to the core because the Twisha I knew was a very strong, independent girl. The Twisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking to me and because we met at such a young age and for similar motive in 2013, what is going on in the news didn't make any sense. So maybe we want unbiased investigation in this particular situation because there has been, like I just saw her mother-in-law's
4: yes.
5: statement and that's so insensitive. Somebody has just died. We have a proof. See, she's saying she went to psychologist or psychiatrist. But are you not the reason she went for that? I mean, that still proves that they are the one who are doing something. That's why she has to go there. Now, there is no, see, schizophrenia is such a disease. If somebody has it, they have different personalities. We have known each other for a long period of time. I never seen her having any kind of schizophrenia.
4: Were you in touch with Twisha Madhuri? Were you in touch with her?
5: Sir, I was in touch with her until 2018-19. After that, life goes on. I shifted to different cities and the countries. So I lost touch. But I met her when we were very young. We were in our early 20s. We were connected on socials, not that much, but we were. I knew what kind of girl she was. And what right now is happening in our country, what her parents are asking is a simple thing, sir. They are only asking to have a fair investigation done. You know the nature of smaller cities, how they are. If you are a bigger person in a smaller city, you are in a way considered a god, you know.
4: Yeah.
5: And to the in the position their in-laws are and they are well connected, you exactly know how corrupt our country is. How the ground zero investigation can impact the justice for Twisha. So what they're asking is the fair investigation. They want her body to come to Delhi.
4: Yeah.
5: I'm learning everything through the news. From last 2 days, I'm not able to sleep peacefully. Her image, her face is coming in my mind all the time.
4: And you know Madhuri,
5: today, and, yes.
4: Since NDTV first reported this story 2 days ago, the fact is the entire media has woken up to it now. Twisha's body is still in the morgue right now. For, you know, the last 1 week, her body has been in the morgue. Her parents have been protesting outside the the chief minister's office. They want a second post-mortem and a fair investigation. They don't believe, like you rightly said, they don't believe that a fair investigation will happen in Bhopal. And most important of all, Madhuri, is that her husband is absconding. What do you think of that? Her husband is absconding. The police is looking for him right now while the entire media is reporting this story.
5: Exactly the question. Why is he absconding? Why is he not there? If he is really, he has done nothing, why is he not there to actually answer the questions? That also raises the suspicion. Also, the dowry case, the demand. See, we think that somebody is very educated. We think somebody has a very good background. But it's clear from the chats that they were also saying to her the very simple thing, ki hum tujhe kaise palenge agar tu job nahi karegi. Right? That's such a small thing to, say, or maybe yeah. For them it was a small thing, but it's a very big thing for a girl who gets married to the family. आप ये कहना चाह रहे हो कि आप उस छोटे मतलब लड़की का पेट भी नहीं भरना चाह रहे हो. On top of that, they have this audacity. She has the audacity, her mother-in-law, to go on the press conference and instead of sympathizing, instead of actually being supportive, and if they have done nothing, why are they actually blaming something and doing the witch hunt? Why are they blaming her that she is, मतलब ये हमारे देश में बहुत नॉर्मल हो गया है कि अगर किसी लड़की के को हमें शेम करना है, नेम करना है, तो बोल दो that she is on drugs, she is schizophrenic, she is mentally ill. This is not done.
4: Yeah.
2: Right, a 33-year-old woman's desperate messages to her family, allegations of harassment inside a marriage that had barely lasted months, and a death has now sparked serious questions. Trisha Sharma was found dead in Bhopal just days before she was supposed to return home to Noida. Her family alleges murder, while police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Here are the details you need to know.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.

0: fees, whether it's the delivery costs, milk prices, your inflation. The government says this triggers global. The US-Iran war has rattled crude oil markets. The rupee, meanwhile, is weakening against the dollar, and that has made imports more expensive. We've actually got crucial reports from the national capital and the financial capital lined up for you this morning. Listen in to how commuters are reacting.
1: Well, we really have to wait and watch out for this because if we look firstly talk about the losses that the OMCs are making before the 3 rupees price hike, the OMCs are making losses of 1,000 crore rupees every day. And as per the data shared by the ministry yesterday, the quantum of losses has come down from 1,000 crore rupees per day to 750 crore rupees per day. And even today's hike will definitely help the OMC to, you know, make up for the losses. But let me remind you that while this particular quarter looks very difficult for the OMC, but the previous financial year has been a record year in terms of revenue and operations for the OMCs. And coming on to your second point, like since the government is doing a staggered hike, this will definitely have an impact on the overall inflation scenario of the country. Just last week, the WPI data came out, and which was at a 40-month high. So any amount of increase, say, in petrol or diesel will have a, you know, cascading effect on the entire economy.
2: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
3: अमित नाम है जी।
2: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
3: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
3: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
2: पर रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना
4: बहुत फर्क पड़ रहा है।
2: फ्राइडे का रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
4: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
2: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पर आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कमी कम हुई है या बढ़ी है?
5: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं।
6: वी बिन हॉपिंग अराउंड डिफरेंट पेट्रोल पंप्स एंड फ्यूल स्टेशन सिंस मॉर्निंग, बट व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट द नंबर ऑफ पीपल हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली इन द लास्ट फ्यू आवर्स। इट माइट जस्ट बी कोइंसिडेंटल, बट माइट ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्राइस राइज दैट वन इज विटनेसिंग हियर इन मुंबई। क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल राइज?
7: अभी ये चालू है सब, ये युद्ध वगैरह सब तो बढ़ेगा ही ना,
6: आपको एक्सपेक्टेड
7: था।
6: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग
7: बढ़ने वाले हैं,
6: फिर मतलब अपने घर पे जो खाना आता है।
7: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब,
8: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है।
9: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होगा ना।
10: Once again, there has been hike in fuel prices across the country. There has been increase of 90 paisa on diesel and petrol price. It has more to do with the disruption in Strait of Hormuz, because ever since there has been West Asia conflict, we have seen the price of the crude oil is increasing. And that's really putting hole in the pocket of the common man. Let me talk to the people here at the petrol pump here in Jammu and try to find out how their budget has been impacted because of this rise in the fuel prices. Kaise iska asar pad raha hai aapke budget pe, jo ye petrol ke prices badh rahe hain aur daam?
11: मिल जाता है, थोड़ी कम चलाएंगे गाड़ी और क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना।
10: कैसे देख रहे हैं जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज फिर से तेल के दाम बढ़ गए?
11: आज फिर बढ़ी है,
10: आज फिर से बढ़ गए 90 पैसा डीजल और पेट्रोल के पास।
11: 90 पहले
10: 3 रुपए बढ़े थे,
11: चलो ऐसा सब बढ़ना ही है, क्या करना है,
10: इतनी मुश्किल हो जा रही है इसकी वजह से जो तेल के।
11: मुश्किल तो बहुत है पर हल कोई नहीं है इसका।
12: सर एक्चुअली हमें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, एज यू नो कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जो मिडल ईस्ट में, द वॉर बिटवीन द ईरान एंड द अमेरिका।
0: Well, yesterday, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri and Defence Minister Rajnath Singh, they had spoken on the price rise. And they've actually driven home the point that for the past 4 years, the prices of petrol and diesel have not increased by even a single penny. They argue they've only recently been raised, and that too by a very nominal amount. Here's what they had to say.
13: तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए,

0: पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं।
1: पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बावजूद वेस्ट हार्बर से बहुत सारी हमारी ऑयल की सिप गुजर नहीं पा रही है। फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी। मैंने पिछले 4 साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें, बहुत ही नामी 3-3 रुपये बढ़ाया गया है। भाई चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए, कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
2: बट पोलिटिकली द टाइमिंग ऑफ दिस प्राइस हाइक इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर। The opposition is questioning why prices were frozen through the election season, why do hikes come immediately after voting ends, and if global crude pressures existed for weeks, why has the burden been deferred till now? And crucially, if the US-Iran war escalates further and crude crosses dangerous levels globally, are Indian consumers staring at even more pain ahead? Because the BJP says that this is a minimal rise in the times of global conflict compared to other countries. But here's what political leaders from the Congress, the RJD, the DMK and the TMC and others have to say regarding the matter.
3: We all know that till the elections is over, the Prime Minister Mr. Modi wanted to keep these prices controlled, and now he has started increasing the prices. The Modi government's mistake, the public will pay for the price. And already they are keeping on increasing every week. Installments, they are doing this increase of prices. This is going to harm each one of us, middle class, poor women, daily wages, MSME sector, working women. Everybody is going to be affected. It is an irresponsible act by the government.
4: देखिए, ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया, और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। उस समय कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यहाँ 1 रुपया बढ़ाया गया। वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ेंगे दाम, इसका पता नहीं।
5: दिस प्राइस हाइक इज द पैटर्न जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, दे वांट हाइक द प्राइस एंड इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस दे विल हाइक द प्राइस। दिस इज द पैटर्न फॉर द लास्ट 5 or 6 इलेक्शंस, एंड आई नो इफ यू इंजेक्ट अ पॉइजन with a huge quantity, the patient will be dead. So they are injecting the poison little by little, so that we will get immunity. But nonetheless, this is poison, and that is the same thing the BJP government is now following. If you increase it by say 10 or 15 rupees, it will be there will be protests on the street. That is the reason. Slowly, every day they are increasing.
6: कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है, काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना जरूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है, तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं।
7: पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है, देश संकट में है, दुनिया संकट में है तेल से, जिस से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है, और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में नहीं।
2: All right, let's switch tracks now. In a major development in the Trisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Trisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to be absconding, with a 10,000 rupee reward announced for him and passport cancellation proceedings also initiated against him. Meanwhile, Trisha's family, they have expressed a demand for a second autopsy, considering the sequence of events surrounding the death and the fact that they have raised questions about the first post-mortem report that was conducted at AIIMS Bhopal. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigation officer for matching the ligature marks on Trisha's neck. And the family now demands that the body should be transferred to Delhi to AIIMS for a Supreme Court-monitored probe and also a second autopsy before the body decomposes. It's been over 30 days, though, since it's actually, I beg your pardon, days after the 33-year-old, Trisha Sharma was found dead at her marital home in Bhopal. Her father has now made a series of allegations against her husband, Samarth Singh, and the family. As I mentioned earlier, the husband is still absconding as the family continues to demand for justice and that second autopsy to be conducted in Delhi at AIIMS. Trisha's father spoke to my colleague Shiv Arur. Here's what he told NDTV earlier.
8: Avnidhi Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Trisha ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
9: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
8: क्या ये कुछ
9: आ रही है सर अब?
8: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
9: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
8: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
9: देखिए, आज आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
8: तो ऐसे क्या
9: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
8: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
9: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
8: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
9: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली। बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीज़न को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
8: त्विशा तो वापस आना चाहती
9: थी कि जिसमें बेड़िया
8: जी जी जी
9: आती थी, आती आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है। पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
8: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
9: नहीं नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई, मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: Well, a young woman dead inside her marital home, a husband that is absconding as we speak, and a grieving father alleging harassment and demanding justice. And now a deeply disturbing war of accusations between two families playing out in public. The mother-in-law has blamed Twisha, claiming the puja part that they conducted at home was merely a show. She's alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called her husband Samarth to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world. These are the list of accusations. Just listen in.
10: Unka parivesh hamara bahut farak tha. Lekin Samarth se maine jab baat ki, he said dekho usko acha stimulus shayad milega. तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी यकीनन। मुझे भी ऐसा अंदेशा था क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी। इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु और कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है। हाईकोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं। शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी, दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे देयर पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, द प्रेस द मीडिया एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस. इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स. टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो. मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं, इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है, बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना, उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर.
2: Well, a 33-year-old woman's desperate messages to her family, allegations of harassment inside a marriage that had barely lasted months, and now a death that has sparked serious questions. Trisha Sharma was found dead in Bhopal just days before she was supposed to return home in Noida, and her family alleges murder, where police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Here are the details you need to know.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.

0: higher than what one can see right now. And that is a reflection of, that probably is a reflection of the price rise as well. There is another gentleman here with me. Excuse me, sir. पेट्रोल का प्राइस वापस एक बार बढ़ गया है 0.91 रुपीज़ से इस बार प्राइस बढ़ा है. आप पेट्रोल यूज़ करते हो, क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल प्राइस के बारे में?
1: इतना प्राइस जो डेली बढ़ता जा रहा है, सो उसमें नॉर्मल लोगों को तो प्रॉब्लम आ ही रही है और इतना हेक्टिक हो गया है लोगों के लिए कि हम मतलब जो हम एवरी वीक में एक बार पेट्रोल भराने जाते थे तो अब वो 10-12 डेज़ के बाद भराना पड़ रहा है. ट्रैवलिंग थोड़ी कम हो गई है और बहुत हैक्टिक हो गया है सब चीज़ों के लिए.
0: हाँ, पेट्रोल डीजल प्राइस के साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर पे जो फूड आता है, जो फेयर टिकट होता है, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी महंगी होती जा रही है पिछले कुछ दिनों से.
1: महंगी तो हर चीज़ होते जा रही है. आज एवरी चीज़, हर आइटम्स का भाव इतना कॉस्टली हो गया है. अगर हम गोल्ड की बात करें हुए, सो गोल्ड आज 2-3 साल पहले जो रेट था 70-80-90,000 था, आज वो ड्रास्टिकली 160 पे पहुंच गए, 158-160 पे पहुंच गए. सो वो कॉमन मैन के लिए तो वो बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम घर पे अगर कॉमनली शादी वादी होती है तो गोल्ड सिल्वर ये सब की ज्वेलरीज बनती है, उसमें इतना हाई इफेक्ट हो रहा है. सो तो ईच एंड एवरी थिंग, फ्रॉम स्मॉल थिंग टू बिग थिंग, हर चीज़ में प्रॉब्लम हुई है.
0: देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द नॉर्मल मुंबईकर्स who use vehicles on a regular basis, and they are sharing their problems with the price rise. You see, it is not just limited to the fuel price rise, because as we've been discussing it since morning, it also affects the corresponding businesses like deliveries, like, you know, the hike in the ticket prices, which might happen as far as even ST or state transport system in Maharashtra is concerned. And it has surely, you know, given a hit to the daily lives of Mumbaikers.
2: Right, Anuj, a rippling effect we're seeing across all industries, and of course the CNG price hike that we saw earlier. Let's go across to Ritu. Ritu, you know, the Prime Minister made that austerity call in terms of, use public transport, you should be carpooling, don't travel abroad, and so on and so forth. Take us through what is the current price after the hike as far as Bengaluru and the state of Karnataka is concerned.
3: Well, as you pointed out, you see, we did see how that the Prime Minister Narendra Modi in fact had a special request and appeal to people, saying how that they really have to control on certain things, whether it's about the oil usage or whether that's about the fuel as well or the travel basically. But however, you see, we are right now in the IT city, is one of those petrol bunks on Lok Bhavan Road, and there you see apparently just a while back I was just trying to talk to the staff member here who goes on to tell us that the footfall basically has decreased this today all of a sudden, that because of the second round of a hike as well. But we'll also get thoughts of what that the people here have to say as well. Sir, petrol diesel ke jo bhaav hai wo abhi dusri baar bade hai, so the rates have increased for the second time. What's your thought about it, sir? Fine, you can talk. Kannada is also fine, anything as comfort.
4: Rate jaasti madidare madam.
3: Okay sir, neevu helik ishta padtira petrol diesel rate jaasti agide second time jaasti agirod one week alle, nimma abhipraya yenu anta?
4: ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 1-6 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
3: ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ
4: ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮಂಥ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೈಲಿ ಇವತ್ತು ರೇಟ್ ಇರೋದು ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
3: Well, you see, of course, you have this person, in fact, trying to tell us that the difficulty that he is facing as he comes from a middle-class family, so the pocket is really costing him a huge as well. The savings are also somewhere getting affected as well. These are the basically thoughts of the common man here at the petrol bank. I'll request my VJ, Govind, as well. Sir, petrol, diesel rate, jo hai... ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೇಟು, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತ?
5: ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ.
3: ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ?
6: ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
3: Okay, all right. You see, if you don't want to, express their thoughts, but of course, we see how that the people are with. You have set of people who are trying to understand the global crisis as well. On the other side, the middle class say that there's some sort of an effect that they are seeing on their pockets. Back to you.
2: Right, grappling with this price rise and with the fear that's being cast as to this might not be the end of it. Thank you so much, Ritu and Anuj, for joining us. We'll also get your voices coming from Delhi with my colleague, Akhil, and what are people in Jammu really saying? Pradeep Datta gets you this report.
6: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
7: अमित नाम है जी।
6: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
7: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
6: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
7: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
6: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
8: बहुत फर्क पड़ रहा है।
6: फ्राइडे के रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
8: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
6: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पर आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं या भीड़ कमी कम हुई है या बढ़ी है?
9: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं।
10: Once again, there has been hike in fuel prices across the country. There has been increase of 90 paisa on diesel and petrol price. It has more to do with the disruption in Strait of Hormuz, because ever since there has been West Asia conflict, we have seen the price of the crude oil is increasing, and that's really putting hole in the pocket of the common man. Let me talk to the people here at the petrol pump here in Jammu and try to find out how their budget has been impacted because of this rise in the fuel prices. कैसे इसका असर पड़ रहा है आपके बजट पे, जो ये पेट्रोल के prices बढ़ रहे हैं? और
11: मिल जाता है, थोड़ी कम चलाएंगे गाड़ी और क्या हो सकता है, तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
10: कैसे देख रहे हैं जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज फिर से तेल के दाम बढ़ गए?
11: आज फिर बढ़ी है,
10: आज फिर से बढ़ गए 90 पैसा डीजल और पेट्रोल के।
11: 90 पहले
10: 3 रुपए बढ़े थे,
11: चलो ऐसा सब बढ़ने ही है, क्या करना है?
10: इतनी मुश्किल हो जा रही है इसकी वजह से जो तेल के?
11: मुश्किल तो बहुत है, पर हल कोई नहीं है इसका।
12: सर एक्चुअली हमें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, एज यू नो कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जो मिडल ईस्ट में, द वॉर बिटवीन द ईरान एंड द अमेरिका।
2: Right, let's talk about the price rise that we have seen and petrol prices that have increased. We talked about earlier the pricing coming in at 94 rupees and 77 paise per liter. And after the first hike, that is in Delhi, in the national capital, petrol started to cost 97.77. That was as of Friday last week, the 15th of May. But this morning, Tuesday, the 19th of May, we're seeing that price hike and the second hike. With that, the price is now at 98.64 per liter. Let's talk about Mumbai. It was 103.54. After the first hike, it became 106.68. And now, after the second hike, petrol costs close to 108 rupees a litre. 107.59, to be precise, is the cost of petrol in the financial capital. Let's talk about Chennai. And earlier, petrol there was over 100 rupees, 100 rupees and 80 paise per litre. After the first hike of that 3 rupees, it became 103 rupees and 67 paise, and now up by almost a rupee at 104.49. That is how much you need to shell out for 1 litre of petrol in Chennai. Kolkata, the highest, which has been hit the hardest. We're talking about earlier it was 105 rupees and 45 paise if you were buying 1 litre of petrol. Now, after the hike that we saw on Friday, it became 108 rupees and 74 paise. But now, today, this morning, petrol is costing more. And that is to the tune of 109.70. That's 30 paise, less than 110 rupees for 1 litre of petrol in Kolkata. Let's also talk about the hike that we have seen as far as Delhi is concerned. We're going to talk about the diesel hike that we're seeing as well. Now, let's talk about, of course, the hike we've seen in terms of petrol, up by 3 rupees on Friday and then up by 91 paise as of this morning. So let's talk about now, as far as diesel is concerned, from 87 rupees and 67 paise per litre. From the first hike, it became 90 rupees and 67 paise for 1 litre of diesel. But today, this morning, it's costing us close to 92 rupees, a little less than that, at 91 rupee and 58 paise. Mumbai, it was 90 rupees per litre initially, till about Friday. Friday saw that first hike, which became 93.14. But now, as of this morning, it is over 94 rupees per litre for diesel. In Chennai, from 92 rupees and 40 paise, it became 95 rupees and 25 paise diesel per litre. But now, this morning, it's gone up to 96 rupees and 11 paise. Let's also talk about Kolkata, where it has seen the highest spike when it comes to petrol rates. Now, we are seeing in fire, you know, diesel was costing about 92 rupees earlier. After the first hike, we've seen 95 rupees and 13 paise per litre of diesel. But this morning, all that has changed. It's now over 96 rupees. 96 rupees and 7 paise per litre if you are buying 1 litre of diesel in Kolkata. Let's get you some of the political reactions coming about. Listen in basically to the petroleum minister. How are they justifying this particular move?
13: तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की ना पाइप नेचुरल गैस की ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी. एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए. पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं.
14: पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बावजूद वेस्ट हार्बर से बहुत सारी हमारी ऑयल की शिप्स गुजर नहीं पा रही है. फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी. मैंने पिछले 4 साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी. अब याद रखें, बहुत ही नामी 3-3 रुपये बढ़ाया गया है. चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए, कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद.
2: And the opposition obviously is up in arms. This is something they've been warning of while the elections were going on, saying that there'll be no hike as far as elections are concerned. And the minute the elections were concluded, we've seen that hike not once but twice. Let's get you some of the political reactions coming in.
15: ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे. उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया, और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया. अब उस समय कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यह 1 रुपया बढ़ाया गया. वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ाएंगे दाम, इसका पता नहीं.
16: दे इट इज ए मिसरूल ऑफ बीजेपी. बीजेपी इज नॉट अ दे आर इकोनॉमिकली दे आर प्रोग्राम्स हैव फेल्ड. व्हाट एवर दे प्रॉमिस्ड इज इन द वर्ड्स ओनली. इन प्रैक्टिस एवरीथिंग हैड फेल्ड. दिस गवर्नमेंट कैन नॉट रन द कंट्री. दे हैव देयर आइडिया इज डिफरेंट, देयर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट. इट इज नॉट रनिंग द कंट्री स्मूथली और सपोर्टिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री, डूइंग गुड टू द पीपल ऑफ द कंट्री. सो दे विल डू एनीथिंग. दैट इज ओनली बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया.
17: कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है. माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है. काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है. इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ाया है. इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना ज़रूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए. हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है. तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं.
18: पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है, देश संकट में है, दुनिया संकट में है. तेल से जिस तरह से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है. और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में नहीं.
2: Switching tracks to the major development when it comes to the Twisha death probe, the bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court. As a probe into the death of Twisha's unnatural circumstances has now picked up pace. Samarth continues to be on the run. There's a bounty that has been announced. 10,000 rupees reward has been announced for him, and his passport cancellation proceedings have been initiated. Meanwhile, the family has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching the marks on her neck. The family now demands that the body should be transferred to Delhi from Madhya Pradesh, and another autopsy should be conducted at the AIIMS hospital here in the national capital. And this is a request that's been made by the family. What else is the family claiming and saying on the matter? The father of Twisha spoke to NDTV's Shivarur. Listen in.
19: Avnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ke death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
20: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
19: क्या ये कुछ
20: आ रही है सर अब?
19: जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
20: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
19: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
20: देखिए, आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
19: तो ऐसे क्या
20: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
19: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
20: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
19: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
20: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रोक करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
19: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
20: जिसमें भेड़िया
19: जी
20: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
19: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
20: नहीं नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: Let's also get you the other side. It's the mother-in-law who has blamed Twisha, claiming the puja part conducted at home was just a show. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and then later informed Samarth in order to let him know that she had done something that the family was against. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions as well. She reportedly suffered from her hands trembling, something she said was a withdrawal symptom of sort. And then she also spoke about her behavior, which changed drastically after she made a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. These are the allegations and the claims being made by the mother-in-law.
1: उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन समर्थ से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी से ब्राइट गर्ल अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था, क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु और कुछ, तो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है, हाईकोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्नाइटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूँ, शायद दैट वॉज माई फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी, जो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे द पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, the press, the media, everything has gone against us. It's very easy, bachche, ladkiyan ye step le leti, jaake jhool jati, irresponsible conduct. Ladke nahi jhool paate hain. So they're treated as criminals. To bear a child is lot of hormonal imbalances also. मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट

0: वंस जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल में रहे हैं, पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना, उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
1: आज एंटिसिपेटरी बेल लगी थी समर्थ की, त्रिशा के हस्बैंड की, जो कोर्ट ने पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद गंभीर मामला होने के कारण और शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंस में डेथ होने के कारण उसको गंभीर मानते हुए वो रिजेक्ट करी है। आज BM2 की मांग परिवार कर रहा है, देखिए परिवार के मन में बहुत सारे डाउट हैं और इसमें कोई, मुझे लगता है कि इसमें सबकी सहूलियत की बात है कि सेकेंड PM भी हो जाए, क्योंकि अगर दूसरे PM में भी वही रिपोर्ट आती है जो पहले PM में आई है तो परिवार के मन से एक जो डाउट है वो भी निकल जाएगा और इससे उनके जो आरोपी पक्ष हैं उनके हितों पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट पड़ता नहीं है।
2: That was Tushar's lawyer. Well, just 5 months after she was married, she was found dead in Bhopal and she was supposed to return home here back in Noida. Her family alleges murder while police have registered a case of dowry, harassment and abatement to suicide. Here are details you need to know.

0: PK Shivkumar up against Siddaramaiah, but now a new name in the mix. We have G. Parmeshwara's name, the Home Minister's name, being also taken for that role of the Chief Minister. It is Jarki Holi who says the High Command will be taking that decision, and that's going to be taking place soon. And it is the superstar turned Chief Minister Vijay, in less than 10 days of taking charge of the state, he's ordered a revamp of the Amma canteens. He said that there's going to be a complete overhauling, and that is after complaints have been made about the quality of food being supplied at these subsidized canteens. And three people have been killed and two others were found dead in a car very close to the mosque where this attack took place in San Diego. Trump is calling it terrible, is asking for a thorough probe.
1: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: Let's start with breaking news coming in, and it is the Delhi Taxi Drivers Union that has decided to go on a three-day strike from the 21st of May, demanding fare hike as far as commercial vehicle drivers are concerned. And that is the Union of the Commercial Vehicle Drivers in Delhi that are planning to go on a three-day strike from the 21st, starting from the 21st, 21st, 22nd, 23rd. That's a three-day strike demanding a hike in taxi and auto fares in view of the price hike that we are seeing. Just today morning, the second price hike of fuel in the national capital and across the country. And due to continuously increasing prices of CNG, petrol and diesel, middle-class drivers are struggling to support their families, and therefore, in coordination with other organizations of Delhi, this is a call that has been taken. And this is a call to go on strike for 3 days. And the 3 days is the 21st, the 22nd and the 23rd of this month, after the central government has increased the fuel prices. We're talking about almost 4 rupees hike that we're seeing in petrol and diesel in the last 4 days itself. Akhil, my colleague, joining us from Delhi in order to get us details. Akhil, this is a decision that's been taken by the Union of the Drivers. These are commercial drivers. Take us to the demands that they're making, because while petrol is going up, why are the fares not at par with what's really happening here, what's unfolding here? This morning, we've seen that 91 paise hike, particularly as far as petrol is concerned. Diesel also has been increased, and of course, the CNG prices have also been increasing.
2: Absolutely, Divya. If you see at this stage, what we have been witnessing on ground, that it's the common people who are paying the brunt of it. I mean, if you see, we have been speaking to the locals, we have been speaking to the cab drivers, transport agency guys, and they have been saying that the impact can be seen, that because if you see in the last 1 week, first what we have seen, that on Friday there was increase of approximately 3 rupees, and today what we have seen, that 91 paisa has already increased in the petrol and diesel prices. So what we have seen, that cumulatively if you see 4 rupees has increased. Behind me you can see the visual of this taxi stand where we are standing right now. And to speak to some of the taxi union, saying that our unions are going on a strike from 21st to May 23rd. क्या नाम है आपका पाजी?
3: दर्शन सिंह जी है जी.
4: ट्रक ड्राइवर का जो यूनियन है वो लोग मई 21 से लेकर के 23 तक जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं. तेल का दाम जो है लगातार बढ़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोग के कमर्शियल व्हीकल्स पे?
3: सर वो हम सुबह के खड़े हैं, रोज़ रोज़ कभी 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 3 डीजल में, पेट्रोल में, सीएनजी में, जो भी करना है वो एक बार ये बढ़ा दें तो हमें पता चले. उससे हमारा जो थोड़ा बहुत काम चलता था वो भी ठप हो गया. हम सुबह से घर के आके खड़े हैं, कोई लॉस मीटर नहीं हो रही, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा. सारा ये प्रभाव तो बढ़ेगा, जब फ़ायदा तो बड़ी कंपनियों को हो रहा है, हम गरीब लोग जहाँ पे सुबह से आके शाम तक बैठे हुए हैं.
4: देख पा रहा हूँ आपके पास जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कितनी टैक्सीज चलती हैं आपकी
3: यहाँ पे? हमारे जो होटल में 35 टैक्सी चलती है, कनाट प्लेस के ऑल टू राउंड इनर सर्कल, आउटर सर्कल, 5 किलोमीटर एरिया में कम से कम 5000-6000 ओला उबर टैक्सी चलती है, जो सभी रोड के ऊपर खड़ी है. इससे फ़र्क तो पड़ता ही है, रेट बढ़ने से कोई हमारे पास काम नहीं आ रहा.
4: जैसे आप लोग होटल में टैक्सी प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो आप वहाँ पे अपने मालिकों से इस बात पे अग्रीमेंट नहीं बन पा रही है कि वो भी जो है वो आपका रेट बढ़ा दे, फेयर इंक्रीज कर दें
3: उस पर? जब अब आगे से अब रेट बढ़ा है तो हम अंदर अपने चीफ सिक्योरिटी से बात करेंगे, तो वो हमारा रेट भी बढ़ाएंगे आगे आने वाले में. पर पता तो चले ना, रोज़ 3 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, जो भी बढ़ाना है एक बार बढ़ा दें. इसकी वजह से सब जो हमारे ट्रक यूनियन है, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे और सब स्टैंडों पे वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं।
4: चक्का व्यायाम करने जा रहे हैं 21 से 23 तक ट्रक ड्राइवर की यूनियन, कितना फ़र्क पड़ने वाला है उससे?
3: सर इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, जितना भी बाहर से माल आ रहा है इस समय वो सारा बॉर्डरों के ऊपर खड़ा है, जैसे ही वो खुलेगा
2: इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन May 21st टिल May 23rd.
0: Right, Akhil, all this has happened because petrol and diesel prices have gone up this morning by 90 paise. We're marking the second fuel price hike in less than a week, 4 days to be precise. Now in Delhi, 98.64, 98 rupees and 64 paise per litre is the cost of petrol, gone up from 97.77. That is how much petrol was costing till about yesterday. And that was after a 3 rupee increase, which was made on Friday, the 15th of May. Across metros, fuel prices have increased. In Delhi, it has increased, but also in Mumbai, it's even more expensive. We're talking about 107 rupees and 59 paise in Mumbai, up by again 91 paise. Kolkata is close to 110 rupees per litre, just 30 paise short at 109.70. While diesel prices has also gone up, we're talking about 91.58 from 90.67 in Delhi and 94 paise to as far as Chennai is concerned, now diesel is costing 96 rupees, over 96 rupees to be precise. And the latest revision comes days after that hike that we saw just 4 days back. So all in all, if you take the cumulative figure, it's almost close to 4 rupees per litre in a matter of 4 days. Let's get you what are the people in India say. The common man that has to bear the brunt of all of this. Let's get you voices from Delhi, from Mumbai, from Chennai. What are people saying?
4: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
5: अमित नाम है जी।
4: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
5: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
4: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
5: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
4: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
6: बहुत फर्क पड़ रहा है।
4: फ्राइडे के रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
6: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
4: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पर आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कम हुई है या बड़ी है?
7: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं।
8: We've been hopping around different petrol pumps and fuel stations since morning, but what we've noticed is that the number of people has gone down considerably in the last few hours. It might just be coincidental, but might also be reflective of the price rise that one is witnessing here in Mumbai. क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल राइज
9: के? ये चालू है सब, ये युद्ध वगैरह सब तो बढ़ेगा ही ना।
8: आपको एक्सपेक्टेड
9: था
8: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग तो
9: बढ़ने वाले हैं
8: फिर, मतलब अपने घर पे जो खाना आता है।
9: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब,
10: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है।
11: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होगा ना।
12: Right now, we are at one of the busiest petrol pumps in Chennai. Less than a week, for a second time, petrol and diesel prices have gone up. As far as Chennai is concerned, petrol prices have increased by 82 paise to 104.49 per litre, while diesel prices have gone up by 86 paise to 96.11 per litre.
13: Vairuma vadikariga, enna onnum puriyilaiye, eh? Enna thidikina indha mari aayidikide? என்ன பண்ணுவேன், எவ்வளோ இன்னைக்கு தானா?
12: ஓகே, ஸோ தீஸ் ஜென்ரல் ப்ரைஸஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் ஷாக் ஓவர் த சடன் இன்க்ரீஸ் இன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ப்ரைஸஸ். யூ திங்க் திஸ் வில் அஃபெக்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக்? லைக்
14: தேர் இஸ் வில் அஃபெக்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக், பட் பீப்புள் ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் ஆன் அதர் ஏரியாஸ், லெட் தம் ஸ்பெண்ட் ஃபார் திஸ் பெட்ரோல்.
0: Right, let's get you political reactions coming about. What is the petroleum minister saying? How are they justifying this move?
15: तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई

0: कमी हमने होने दी एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए। पिछले चार वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं।
1: पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बावजूद वेस्ट हार्मोस से बहुत सारी हमारी ऑयल की सिप्स गुजर नहीं पा रही है। फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी। मैंने पिछले चार साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें, बहुत ही नामिनल 3-3 रुपये बढ़ाया गया है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए, कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
2: Now let's get you the latest as far as the major development in the death probe of Tushar is concerned. The bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court as the probe into the death of Tushar under unnatural circumstances is picking up speed. Samarth is continued to be on the run. There is a bounty that's been announced to the tune of 10,000 rupees and his passport cancellation proceedings have also been initiated. It's the family that's expressed a demand for a second autopsy, saying that this autopsy should be conducted in Delhi's AIIMS hospital, not in Madhya Pradesh. Now, there are a lot of events that are, being spoken of. There are reports of that alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching with the marks on Tushar's neck. The family is demanding that there needs to be justice. They're asking for that second autopsy because they're not satisfied with what's taken place so far in the investigation. We also spoke exclusively to the parents and the brother of Tushar. A family has made series of allegations and claims against her husband and his family. Listen in.
3: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं। बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी। अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
4: नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे। 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी। उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो। यदि आप, अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तुड़ा दे। हमने कहा चलो हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे। बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ। मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी। तो बोली हाँ मम्मी।
3: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए। आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है। एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
5: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है। एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है, और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले। ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं। हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए। तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम करना।
3: आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए?
4: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप। यही वाला मेरे को हो रहा है।
5: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था, हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था। ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया।
4: पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं।
3: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
4: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी, तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
3: निकलना चाहती थी।
4: हाँ जी,
3: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी?
5: बिल्कुल बात कर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
4: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है इसे।
3: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से?
4: जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो, ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है, तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता, अच्छा सब कुछ खत्म हो गया मैं किसको लिखूंगी।

0: ट्रिशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर ट्रिशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए ट्रिशा का इंसाफ कैसा दिखता है?
1: मैम, बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, इस 7 दिन में पिछले 4 दिन फर्स्ट 4 डेज वर रियली हैविक। फाइलिंग दैट FIR आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट वेर इन माई पेरेंट्स, वन वो इज 61 ईयर ओल्ड, एंजियोग्राफी हुई उनकी, माई मदर इज इनकंसोलेबल एंड वी वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू लिसन टू अस। सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट वी आर हियर टू फाइट एंड वी विल बी फाइटिंग। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम।
2: Let's also listen to the other side. This was the family of Trisha, the brother, the mother, the father, all, understandably in the state that they are. But at this time, it's the mother-in-law who's coming out and making allegations and fresh allegations, claiming things against Trisha in regard to a handshaking, talking about that she was doing puja paath, which was just a show. She's alleged that she had taken an abortion pill and only later informed Smart about it. Let's listen in to what she is saying on this matter.
3: उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन समर्थ से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी इज अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था, क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु और कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्रिशा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL अपने नाम से, मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है, हाईकोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी

0: मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था. इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे. और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं. फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएं होती हैं. लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट. उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी. तो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे देयर पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स. The press, the media, everything has gone against us. It's very easy. बच्चे लड़कियां ये step ले लेती जाके झूल जाती, irresponsible conduct. लड़के नहीं झूल पाते हैं, so they're treated as criminals. To bear a child is lot of hormonal imbalances also. मैंने उसकी mother को phone किया. I said, she's you're needed now. 5 महीने में they never came except once. जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया. ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर. उस जब भी इसने MTP स्वच्छ आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट. उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी. उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी. एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था. संडे के दिन दैट इज 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज़ टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम. शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही. पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ. उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया हैव टेकन दैट MTP पिल. शी टोल्ड मी ऑल्सो उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे. एंड आई सेड लुक यू डन दिस, लेकिन आपका एक यू नो एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड. तो एक सिंपल वुमन से आप यू नो योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर. डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट दम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर. वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है. वो आगे के लिए एक एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े. बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस.
1: आज एंटीसिपेटरी बेल लगी थी समर्थ की, त्रिशा के हस्बैंड की, जो कोर्ट ने पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद गंभीर मामला होने के कारण और शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंस में डेथ होने के कारण उसको गंभीर मानते हुए वो रिजेक्ट.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: where Trisha's body is still lying. After post-mortem, the body was brought here and the family, her parents, her brother, refused to take the body till they get a permission for the second post-mortem because they believe that in Bhopal, they can't trust the investigation, they can't trust the post-mortem report, and they want a second post-mortem done in AIIMS Delhi. And that's the request they have petitioned in front of the judiciary, in front of the judge, which needs to be finalized, and the case is on. While her husband is still absconding, SIT team has formed 6 teams to locate the absconding husband of Trisha Sharma, who the family claims, who the parents of Trisha and brother of Trisha claim has killed Trisha Sharma. And though the mother-in-law came out in public yesterday and spoke about how Trisha was a drug addict, she had schizophrenia, she was getting medication for schizophrenia. Well, those are the claims which the in-laws are making, but the family believes Trisha was tortured, abused mentally, physically, and gradually it led to her murder. While Trisha's body is inside in this mortuary, still waiting for her last trial, the family is insisting till the judges don't give a go-ahead second post-mortem, they are not going to perform the last rites of Trisha. So,
1: and Sikta Deo has spoken to Trisha's parents and brother. Her family has made a series of allegations against the husband, Samarth Singh, and his family. Samarth Singh, like I said, remains on the run.
0: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
2: देखो, हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, जब हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चलो हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
0: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
3: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसी क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी. ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम
0: करना. आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या आप क्या गलत हुआ,
3: गलत हो गया.
0: आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
2: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
3: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था हमें. उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
2: पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
0: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
2: हाँ वो ऐसा बोली थी, मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी, तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
0: निकलना चाहती थी।
2: हाँ जी,
0: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी,
3: बिल्कुल बात कर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं रुकूंगी,
2: क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे।
0: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से।
2: जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो, ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है, तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी।

0: अगर हम सोचें कि रात में हम तीन ही लोग हैं, इट्स नॉट ट्रू, एक्चुअली देयर वाज अ फोर्थ पर्सन, और वो फोर्थ पर्सन उसके दिमाग में था, इसीलिए वो दिख रही है शाम के समय बैठ के टीवी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है, फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए उसका फ़ोन एक तरफ एंड शी वॉज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कॉन्ट्रोवर्सी है, एक पल में खुश एक पल में नाराज़, इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो, दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको कभी भी दवाई जैसे दो, डोंट मॉनिटर मी, डोंट फोर्स मी, आप क्यों खा के, मैंने यू वांट कि मैं भैंस हो जाऊं और सिर्फ बच्चा पैदा करूं, उसका कई बार ऐसा रहता, कई बार बोलती थी कि नहीं नहीं बच्चे तो होने चाहिए, फीस कितनी होगी, पूरा सब वो तरह की चर्चा करती थी, उसके अंदर ही ऐसी दो पर्सनालिटीज थी, एंड उसको इलाज के उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत थी, दैट वॉज वॉट वॉज नीडेड। एंड इट्स सो ईजी, कितने लोग कितने प्रेशर्स में रहते हैं, समर्थ हिमसेल्फ कितना प्रेशर रहा होगा टू अंडरस्टैंड कि उसका फर्स्ट इशू ये ही शी हैज़ गॉन एंड अबॉर्टेड, लेकिन आदमियों के लिए इतना आसान नहीं है कि आंसू भी निकालें ऐसे मौके में, वो फिर भी आगे आते हैं कि हम इस परिवार को इस मैरिज को बचा के रखें क्योंकि हम शादी करके लाए हैं। तो वो काउंसलिंग से लेके जितना कर सकता था वो साथ में रहा, एंड उसके बाद फिर भी एक व्यक्ति ऐसा कदम ले तो इसको क्या कहोगे फिर।
1: एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें सीढ़ियों पे सीपीआर आप लोग दे रहे हैं, परिजन दे रहे हैं
0: जी।
1: उसके पहले क्या हुआ और सीपीआर देने की बात, क्या ऊपर भी सीपीआर देने की कोशिश की थी आप लोगों?
0: बिल्कुल हुआ, वो रोता जा रहा था, आई मीन वी ओपन दैट, आई मीन उसने बॉडी ऐसा ऊपर किया एंड आई ट्राइड टू रिमूव दिस थिंग, तो जैसे रिमूव किया वहीं का वहीं सीपीआर दिया, वहीं का वहीं पुश किया, मनु को जो बगल में बेटा है उसको बुलाया, गेट में दौड़ के खोली, गाड़ी निकाली, सिस्टर की गाड़ी भी निकाली, बिकॉज क्या है उतने बड़े पर्सन को लाना, दो सीढ़ी पार करते हुए, सीढ़ी का घुमाव इतने रहते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, आप माने इट्स सो ट्रैजिक, और इस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस हमें क्रिमिनल बताया जा रहा है।
1: कह रहे हैं कि माँ से बात करी थी, अचानक फ़ोन कट गया, फिर मौत की खबर आती है, व्हाट्सएप चैट में कई तरीके के आरोप हैं कि वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं और वो यहाँ से जाना चाहती हैं, दहेज प्रताड़ना को लेकर बात हो रही है, कुछ पैसे आप लोग मांग रहे थे आरोप है, इस पर क्या कहेंगे?
0: कितना मांग रहे थे, उनका FIR में तो 2 लाख लिखा है और हमने तो उल्टा 7.5-8 लाख रुपए उनको दिए हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन?
1: इतने पैसे आपने दिए
0: उनका? देखो फर्स्ट टाइम तो शादी से पहले उसने कहा था मेरी जॉब छूट गई, शादी में उसको प्रेपरेशन के लिए भी जरूरत थी पैसे, समर्थ ने कुछ उस समय दिए थे, उसके बाद शादी के बाद भी दिए थे बिकॉज शी सेड सैलरी नहीं आ रही है। उसके बाद आई नो सम ऑफ दैट मनी बिकॉज हनीमून में भी खर्च हुआ होगा, मे बी 1-1.5 लाख खर्च हुआ होगा, बाकी और उसके जो भी एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके ब्रदर की शादी थी मार्च में, उसको अपने लिए भी कुछ बनाना होगा करना होगा, तो वॉट एवर शी नीडेड, टिकट्स बुक करने, वॉट एवर शी नीडेड, पैसों को लेकर तो कभी देयर वाज नो क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज गिवन, तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
2: So for a 360 degree perspective, we brought you the claims being made by Thwisha's family, the claims being made by the in-laws. I want to now go to Anurag, who's standing by in Bhopal. Anurag, let's talk about where the investigations stand as well. Many would say that there have been lapses in the probe already, starting with that nylon belt, which is not present in the autopsy room when the first autopsy took place. This also indicates huge lapses when it comes to the investigation. How does one trust this investigation then, Anurag?
3: Yes, Vedika, a very important crucial piece of evidence, and we discussed this yesterday also, because had the belt been produced during the post-mortem, it could have helped determine whether the marks found on Trisha's neck were caused by that very belt. The nylon belt seized by the police should have been presented before the hospital at the time of the post-mortem. Its width, texture and structure could have been matched with the ligature marks on Trisha's neck to scientifically examine whether it was capable of being used for hanging and whether the injuries were consistent with it. A DNA examination of that particular belt could have been conducted at that stage. Investigators could have, you know, further established what the belt was normally used for and whether it bore any, you know, biological or forensic, you know, traces relevant to the case. And Trisha's neck, this is also very important, had two parallel ligature marks. In the absence of the belt...
2: Stopped you there, because very quickly a follow-up question on this itself. What is the police saying about the absence of the belt on day one of the autopsy?
3: Vedika, now the police is saying that they will investigate the matter, and on the second day, that very belt was submitted at the AIIMS Bhopal for further forensic examination. But I just wanted to tell you something more. I mean, the controversy did not end with the missing belt. There are also serious discrepancies in the police FIR. The FIR, we have a copy of the FIR, states that Trisha's body was handed over to the parents for final rites, but the body is still inside the AIIMS mortuary. It's been almost 7 days. And in another discrepancy, Trisha's age is mentioned around 31 years in one section, but twice in the FIR, it was mentioned 33 years.
2: All right, Anurag, thanks for joining me live. That this, of course, remains our top focus, justice for Trisha. Who failed Trisha is something we will focus on even at 1 p.m. Trisha was found dead in Bhopal just days before she was supposed to return to her house in Noida in Uttar Pradesh. Her family alleges murder, while police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Here's a report.

0: increases. Mumbai Petrol rose by 91 paise to ₹107.59 per litre. Kolkata recorded the sharpest petrol hike of 96 paise, taking the price to 109.7 per litre, while diesel has increased to 91.58 from 90.67 in the national capital and 94 paise to 96.07 in Chennai. The latest revision comes days after fuel prices were raised by ₹3 per litre on Friday amid rising crude oil prices.
1: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
2: अमित नाम है जी।
1: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
2: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
2: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
1: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
3: बहुत फर्क पड़ रहा है।
1: फ्राइडे का रोज देखा था ₹3 बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन ₹4 के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
3: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
1: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पे आते हैं, पेट्रोल पंप पे आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कमी कम हुई है या बढ़ी है?
4: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं।
5: We've been hopping around different petrol pumps and fuel stations since morning, but what we've noticed is that the number of people has gone down considerably in the last few hours. It might just be coincidental, but might also be reflective of the price rise that one is witnessing here in Mumbai. क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल राइज?
6: अभी ये चालू है सब, ये युद्ध वगैरह सब तो बढ़ेगा ही ना,
5: आपको एक्सपेक्टेड?
6: एक्सपेक्टेड था।
5: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग
6: बढ़ने वाले हैं
5: फिर, मतलब अपने घर पे जो खाना आता है?
6: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब,
7: क्या करेगा? सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है?
8: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होगा ना।
0: Yesterday, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri had spoken on this price rise and how for the past 4 years, the prices of petrol and diesel have not increased by even a single penny. Listen into what he had to say.
9: So, मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं।
0: All right, let's take you through the double fuel shock within a week in India. On your screen there, you see how petrol and diesel prices have jumped in Delhi. First, the change was ₹3, of course. You're seeing the change in Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai. And now, of course, another change in rates after the price hike that has happened, and diesel and petrol today, this morning. So the first on the 15th of May, the second change on the 19th of May, taking the prices really high when it comes to per litre of petrol price. From 97, it's 98.64 now, and Kolkata also registering a high from 108.74 now. It's gone up to 109.70. I think we have another graphic also on the diesel prices going up, if I'm not mistaken. All right, we don't. So we're going to leave you. Yes, we do. So Delhi, again, you have a ₹3 hike there, 3.11 when it comes to Kolkata, 3.11 when it comes to Mumbai, and 2.86 when it comes to Chennai. So clearly on the 15th of May, you're seeing those changes in prices again. On the 19th, it's gone up from about 91 paise to about 94 paise when it comes to Mumbai as well as Kolkata, changing those prices even further. But you have the government stating that these have been minimal changes in petrol and diesel prices when it comes to the crude oil shock that you're seeing across the world. Leaving you with that for now. We'll be back with more in moments from now. Stay tuned to Breaking Ground.

0: since you have taken the stand that you have nothing to do with the death of the daughter-in-law, nor does your son, and the anticipatory bail plea has been cancelled because of the mysterious circumstances under which your daughter-in-law has died, why isn't your son coming before the investigating agencies? A very simple question, ma'am.
1: Madam, he will be definitely there provided he gets the protection against being sent to custody. 100% he will be there for everything. He has been and he will continue to be there. We ourselves would like to support this whole matter and see that there is a clean and fair investigation and not an investigation which is thrown to the media, which is there out in the streets with people raving and ranting and following little groups and Twitter groups. We have our limitations and it is they who have put us in this corner, and now we are being hunted like fugitives, which is completely wrong.
0: Ms. Singh, I want to ask you, you have also gone on to say, Ms. Singh, for a moment, please, I have another question for you. All right, Ms. Singh, they're disconnecting the line, but there are a couple of questions we had for her. My next would have been, what proof does she have when it comes to the allegation that her daughter-in-law consumed marijuana? But we'll try and get in touch with her once again. But no concrete answers when it comes to one simple question. When it comes to the mother-in-law of Thwisha, where is her son? Why is he on the run? Let's just listen in to what Thwisha's parents had to say to my colleague sometime back earlier this morning. NDTV had a conversation with a very emotional family. Listen in.
2: Rekha ji, aapke chats Thwisha ke saath public domain mein hain. Bahut sari baatein Thwisha aapse kara karti thi. Ab jab aap peeche mudke dekhti hain, sabse pehle kya ehsaas hota hai? Kya aapko turant use bula lena chahiye tha? Kyun deri kar diya?
3: नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, जब हमने टिकट कराई थी उनकी, गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो, यदि अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चलो हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
2: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ Thwisha शेयर करती थी उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
4: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसी क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम करना.
2: आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या आप क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
3: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
4: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था, हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
3: पर घर में जाऊँगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
2: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या Thwisha के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
3: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी, तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक.
2: खुद निकलना चाहती थी?
3: हाँ जी.
2: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी?
4: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
3: नहीं
4: रुकूंगी.

0: success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
1: इतना जॉली इतनी हैपनिंग लड़की थी और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए 15 किलो उसका वेट लूज हुआ
0: नाउ एज इन्वेस्टिगेटर्स पीस टुगेदर द इवेंट्स लीडिंग अप टू हर डेथ Questions continue to grow around the circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
2: Let's also bring you the latest in the Deepika case. The probe has intensified in the Greater Noida dowry case. A hematoma, which is a blood clot, was found in the middle and left side of Deepika's brain. The spleen was found ruptured. The left kidney was found in a pale condition. The chambers of the heart were found empty. Bleeding was found in various parts of the body. These are, of course, disturbing details that we're bringing to you. This is the case pertaining to Greater Noida, a dowry case where Deepika ended her life on the 17th of May. The family alleging that this is a case of dowry. The husband and father-in-law have already been arrested. But these are the details we bring to you as the probe intensifies into the case. A hematoma was found in the middle and left side of Deepika's brain. The spleen was found ruptured and the left kidney was found in a pale condition. And that's the latest that we have for you in terms of the probe. Petrol and diesel prices have increased by around 90 paise per litre, marking the second fuel price hike in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98.64 per litre, up from 97.77. Across metros, fuel prices saw similar increases. In Mumbai, petrol rose by 91 paise to 107.59 per litre. Kolkata recorded the sharpest petrol hike of 96 paise, taking the price to 109.7 per litre, while diesel has increased to 91.58. from 90.67 in Delhi and 94 paise to 96.07 in Chennai. The latest revision comes days after fuel prices were raised by 3 rupees per litre on Friday amid rising crude oil prices. Bringing you these reports.
3: क्या नाम है आपका?
4: अमित नाम है जी.
3: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
4: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी. टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
4: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए.
3: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
5: बहुत फ़र्क पड़ रहा है.
3: फ्राइडे का रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए. क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
5: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा.
3: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पे आते हैं, पेट्रोल पंप पे आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कम हुई है या बढ़ी है?
6: फिलहाल तो कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं.
7: We've been hopping around different petrol

0: कि ऐसा क्यों, और मतलब रीनीट हो भी रहा है तो उन लोगों का होना चाहिए ना जिनके पास वो पेपर पहुंचा या फिर जिन्होंने ख़रीदा, तो उन लोगों का होना चाहिए। हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
1: जैसे पेपर देकर जिस दिन हम आए हैं, काफ़ी अफवाह तो है थी कि पेपर लीक हुआ है, लीक हुआ है। ट्रस्ट तो करा नहीं, ऑफकोर्स हर साल होता है, बट आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद पता चला कि सच में लीक हुआ है। टेलीग्राम चैनल थे कुछ जिन पे ये चीज़ वायरल हुई बहुत कि पेपर बिक रहे हैं इतने रुपए में, इतने रुपए में, ऑफकोर्स, बट दैट्स टोटली नॉट फेयर अबाउट दैट कि वो ऐसा क्यों हुआ है। और रीनीट ईजी नहीं है जहाँ तक हम सबको पता है।
2: विद लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नीट एवरी ईयर, इन्वेस्टिगेटर्स नाउ फेस अ पैरेलल चैलेंज tracking encrypted online networks that promise leaked papers, demand money, and operate in plain sight on social media platforms.
3: From audio pitches to alleged payment proofs, the operations of these Telegram channels appear systematic as well as unapologetic. Now, the investigations into the larger NEET paper leak case may continue, but one has to understand that these channels, these groups are just a click away. With camera person Sachin Gupta, this is Bismi Taskin for NDTV.
4: Joining us live is Mr. Shashikant Suthar, the whistleblower in the NEET leak case. Mr. Suthar, thank you so much for speaking to us here on NDTV. Sabse pehle, aapko kaise pata chala ki NEET ka paper leak hua hai?
5: मैम, 3 तारीख को जो नीट का पेपर हुआ था, उस पेपर को टैली करने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद जो पेपर मेरे पास आया कि ये पेपर नीट में आज हुआ है, तो हमने बच्चों के डाउट वगैरह सोल्व किए। डाउट सोल्व करने के बाद जब मैं मेरे किसी परिचित से मिलता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक वायरल PDF दिखाई थी, जो उनका कहना था कि ये जो PDF है वो व्हाट्सएप पर काफी स्प्रेड हो रही है। उस पेपर को देखते हुए जो मैंने तो उसमें हूबहू 45 out of 45 क्वेश्चन जो थे वो पेपर से मैच कर रहे थे। देन आफ्टर हमने फिर बायोलॉजी की PDF को भी, मेरे साथी जो टीचर है उनको हमने बोला, तो उन्होंने भी बायोलॉजी की PDF को टैली किया, तो उनको भी पता चला कि यार 90 out of 90 क्वेश्चन जो है वो हूबहू मैच कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने इस बारे में पूरा मतलब डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे हैं, उनको इस बारे में बताया है कि कैसे ये चीजें हो रही है, तो उन्होंने भी समझने की कोशिश उसे पूरी करी थी। और जैसे SP सर है, उन्होंने भी हमें अच्छा गाइड किया था कि हम इस मैटर को पूरे इंडिया लेवल पे कैसे अपन इस पे कर सकते हैं। और फिर हमने NTA को और CBI को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मेल के थ्रू।
4: शशिकांत जी, ये जो गेस्ट पेपर था वो आपके पास कैसे आया था, स्टूडेंट्स के थ्रू कि आप को ये पेपर कहां से मिला? The guest paper.
5: मेरा कोई नॉन था, उसने मुझे दिखाया था, स्टूडेंट के थ्रू नहीं आया था। हमारे कोई नॉन थे जो हमारे साथ ही रहते हैं, उन्होंने दिखाया था कि उनके पास ही पिछले 2 तारीख को आ गया था, मतलब एक दिन पहले आ गया था
4: जी।
5: तो ऐसे फिर हमने प्रूफ कुछ अच्छे प्रूफ लेके, ताकि मतलब NTA हमारी बात पे थोड़ा गौर फरमाए
4: जी,
5: ऐसे कुछ प्रूफ लेकर हमने उनसे फिर हमने मेल के थ्रू हमने ये चीजें शिकायत करी
4: जी। तो आप रात 1:30 बजे पुलिस स्टेशन जाने का आपने फैसला क्यों लिया?
5: क्योंकि चीजों को मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी मतलब ये हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे पैनिक होते हैं इन चीजों से कि चीजें बाहर नहीं निकले उससे पहले, मतलब जैसे कहते हैं र्यूमर्स नहीं फैले अपने, कोई भी र्यूमर्स स्प्रेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये डिसीजन लिया गया कि हम आज ही जो अपन कर सकते हैं वो कार्रवाई हम आज करते हैं। तो फिर हम रात को ही थाने पहुंच गए थे उसके लिए।
4: शशिकांत जी, आपने लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी? क्या किसी तरह का डर था आपको?
5: नहीं मैम, डर वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें, डर का ऐसा कोई माहौल नहीं था, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी जो हार्ड वर्किंग है, वो हार्ड वर्किंग ने हमें मतलब इसके लिए मोटिवेट किया ना, तो कि बच्चे की जो हार्ड वर्किंग है वो खराब नहीं हो।
4: तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं किया आपने?
5: FIR दर्ज करने के लिए ऐसा था मैम कि हम जब FIR दर्ज करवाने गए थे तो हमारे पास पूरे उसके लिए फुल प्रूफ नहीं थे, तो फिर हमने 2-3 दिन प्रूफ जुटाने के बाद FIR नहीं करके सीधा NTA को, ज्यादा बढ़िया रहा कि NTA को हमने मेल वगैरह कर दिया और उनसे क्योंकि रिस्पांस आया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी FIR वगैरह करवाने की।
4: शशिकांत जी, आपको कोई दबाव, are you facing any kind of intimidation? क्या आपको किसी दबाव या धमकी का सामना करना पड़ रहा है अभी?
5: नहीं मैम, अभी तक मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेकर इतने दिन बीत गए हैं, लगभग 15 डेज हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक किसी से कोई धमकी या किसी से कोई दबाव या किसी के कोई प्रेशर मुझ पे नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इन बातों से नहीं डर रहा हूँ। और जो होगा मतलब वो अच्छे के लिए होगा
4: जी।
5: जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, तो किसी न किसी को तो ये स्टेप उठाना ही चाहिए था, और भगवान ने मुझे जरिया बनाया है उन बच्चों की मेहनत को जाया नहीं देने के लिए, तो उसका भी शुक्रिया करना चाहूंगा मैं, धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का भी, क्योंकि जिन्होंने मुझे इसके लिए काबिल बनाया कि मैं ऐसा काम कर सकूं।
4: शशिकांत जी, ये बहुत बड़ा वेब है, अरेस्ट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अंदरूनी लोग की मिली भगत हो सकती है, दैट इंटरनली अ लॉट ऑफ पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस लीक ऑफ दिस नेटवर्क?
5: ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर प्रोसेस है, तो मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। लगने से मैम देश में चीजें नहीं चलती है कि मुझे लगता है इसलिए ये चीजें चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो हम सबके सामने ये सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी।
4: तो आपने कहा एनटीए को भी आपने ईमेल किया था, क्या सबूत भेजे थे आपने?
5: हमने सारे वाक्य जो भी हमने मतलब जितने हमने सबूत निकाल पाए थे, जितने हमने नेम इसमें डिनोट कर पाए थे, वो सारी चीजें हमने एनटीए को मेल के थ्रू बताई थी। उनको जब लगा कि हाँ मैटर सीरियस है, ये जो मतलब मेल में कह रहे हैं वो सच हो सकता है, तो फिर एनटीए से अभिषेक सिंह जी का मेरे पास फोन आता है, विद इन 2 to 3 hours ही एनटीए इसमें एक्शन लेता है, और मेरे पास उनका फोन आता है, फोन पे सारी जानकारी वो लेते हैं, और फिर सीबीआई से भी फोन आता है, और 5 to 6 hours के बाद हमारे पास दिल्ली से टीम आ जाती है, वो सारे हमने फिजिकल जो भी हमारे पास प्रूफ थे वो उनको दिए, फिर इसमें एसओजी वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत जल्दी मतलब फास्ट ट्रैक काम हुआ है ये।
4: मगर आपको कभी लगता है कि आप कभी सोचते शशिकांत जी, अगर आपने ये एक्सपोज नहीं किया होता, ये पूरा मामला आप सामने नहीं लाते, तो ये मामला शायद दब जाता, इट वुडंट हैव बीन एक्सपोज्ड?
5: मेबी मैम, मेबी ऐसा हो सकता था कि अगर मतलब ऐसा हो सकता था कि कोई भी इसके लिए नहीं करता, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे थ्रेड वगैरह होते हैं जिनका डर लोगों को लगता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनका डर लोगों को लगता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इन सब का, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि एज ए टीचर होने के नाते मेरा ये मतलब एथिक बनते हैं, मेरा ये ड्यूटी बनती है
4: जी,
5: कि मैं इन चीजों बच्चों के जो हार्ड वर्किंग है उसको सिक्योर करूं, ताकि बच्चे आगे भी हार्ड वर्किंग करने के लिए बच्चे पीछे नहीं हटे।
4: We're running out of time, शशिकांत जी, before I let you go, आपके मुताबिक इस पूरे नीट सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है?
5: मैं तो इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर पे नहीं हूं अभी कि मैं इतना सोच पाऊं कि क्या कमी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हम बहुत मतलब छोटे इंसान हैं और बहुत कम एजुकेशन है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें।
4: शशिकांत जी, आप अपने आप को छोटे इंसान बोल रहे हैं, बट टुडे यू आर द विसल ब्लोअर, द मैन हु हैज एक्सपोज्ड द रॉट विद इन द सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स हेल्ड इन द कंट्री एंड द नेटवर्क बिहाइंड इट, द लीक हैज बीन सो मैसिव, सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ब्रेव इनफ, फॉर गोइंग इन द मिडल ऑफ द नाइट टू द पुलिस स्टेशन, फॉर फॉलोइंग दिस अप एंड टेकिंग इट टू द एनटीए एंड टू द सीबीआई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर ऑन एनडीटीवी, थैंk you for your time.
5: Thank you, ma'am.
4: On that note, we're sipping a short break. News and updates on the other side. I'll be back with more. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's

0: convening with the prime ministers of Norway, Denmark, Finland, Iceland and Sweden. So a bilateral there held with Iceland's prime minister in Oslo, where the prime minister has been since yesterday. Well, let's go across to Aditya Raj Kaul for more on this story. All right, we will try and connect with Aditya, but a crucial summit there, a high-level conference which is designed to solidify Delhi's geopolitical alignment with the Nordic bloc, building upon the foundational frameworks established during previous iterations in Stockholm in 2018, as well as in Copenhagen in 2022. So Prime Minister Narendra Modi in Oslo, continues to be in Oslo, where he has met and held a bilateral meeting with Iceland's Prime Minister. This meeting comes ahead of the third India-Nordic Summit. Prime Minister Modi will be joining the third India-Nordic Summit, which will take place in Oslo, convening with the Prime Ministers of Norway, Denmark, Finland, Iceland and Sweden. All right, let's now focus on our on the story of Twisha, the Delhi girl who died in Bhopal. And lots of questions have been raised. NDTV Sikta Deo is there in Bhopal. Over to you, Sikta, for all the very latest.
1: Hello and welcome to this special show from Bhopal. In a major development in the Twisha Sharma death case, husband's Samarth Singh's bail plea has been rejected by the court. As a probe into the death of Twisha's under unnatural circumstances picks up pace, Samarth continues to be on the run and a reward of 10,000 rupees is announced for him and a passport cancellation proceedings initiated against him too. Meanwhile, Twisha's family has expressed a demand for a second autopsy, considering the sequence of events which led to Twisha's death. As per reports, the alleged belt which was used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching the ligature marks on Twisha's neck. The family wants the body to be transferred to AIIMS Delhi for the Supreme Court monitored probe and a second autopsy before the body decomposes. NDTV has spoken exclusively to Twisha Sharma's parents and her brother. They have made serious allegations against her husband Samarth Singh and the family. Listen in to this conversation. Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
2: देखो, हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, जब हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि आप अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
1: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
3: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का, कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम करना।
4: आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए।
2: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है मैं चली जाती, उनके मना करने पे मैं चली जाती चुपचाप, यही वाला मेरे को हो रहा है।
3: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था हमें, उसको उस घर में नहीं छोड़ना था। ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया।
2: पर घर में जाऊंगी एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं।
4: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
2: हाँ वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी, तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
4: निकलना चाहती थी।
2: हाँ जी,
4: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी।
3: बिल्कुल बात कर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
2: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना ऐसे।
4: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से
2: मुझे फ़ोन भी कर रही है, तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो, ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है, तो मैंने फ़ोन चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर्थ सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी।

0: ट्विशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर ट्विशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए ट्विशा का इंसाफ कैसा दिखता है?
1: मैम, बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, इस 7 दिन में पिछले 4 दिन फर्स्ट 4 डेज वर रियली हैविक। फाइलिंग दैट FIR आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट वेर इन माई पेरेंट्स, वन वो इज 61 ईयर ओल्ड, एंजियोग्राफी हुई है उनकी, माई मदर इज इनकंसोलेबल, एंड वी वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू लिसन टू अस। सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट वी आर हियर टू फाइट एंड वी विल बी फाइटिंग। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम।
0: जो चैट अभी सबके सामने है मीनाक्षी, वो चैट आपके साथ हो रही थी। ट्विशा लगातार आपको एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी ठीक नहीं है, मैं तो फंस चुकी हूँ, तुम ऐसी शादी में कभी मत।
2: वो 15 दिन से मेरे को मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट वो फ़ोन नहीं कर पा रही थी। बट ये मैसेज करती थी कि शादी में जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के शादी करना, क्योंकि हम दोनों सेम एज के, ऑलमोस्ट 2 साल मेरे से बड़ी है बस। तो हम शादी से पहले हमारा डिस्कशन होता था कैसे लड़के से शादी करनी है, क्या है, तो वो मुझे हमेशा समझाती थी। फिर शादी के बाद बोलने लगी कि जो मैंने गलती करी है वो तुम मत करना। और मेरे पास लास्ट मैसेज उसका सैटरडे को आया, जिसमें उसने लिखा है, मैं ये मैसेज भी दिखाऊंगी, कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो। हम लोग एक दूसरे से ब्रो ब्रो करके बात करते थे, तो बस तू मत फंसना। वो हमेशा मुझे ये इंडिकेशन
0: समझ पा रही थी कि क्या कहना चाह रही है।
2: हाँ, मेरे को दिख रहा था कि वो किसी बहुत ही बुरी चीज़ में है अभी, जो बात नहीं कर पा रही है। मतलब उसको सोचना नहीं पड़ता था फ़ोन में आने से पहले मेरे को, वो कभी भी कॉल कर देती थी। उसको सोचना पड़ रहा था शादी से, शादी के बाद
0: बात करने के लिए।
2: मतलब इतना ऐसा लगता था, मैं जब उससे मैसेज पे बात करती थी तो ऐसा लगता था कि वो डरी हुई है, कि कोई उसके आसपास है जो उसको देख रहा है, वो बात नहीं कर। वो हमेशा यही बोलती थी, आई विल कॉल यू व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन द टाइम इज राइट। अभी सब लोग हैं यहाँ पे, अभी ये है, अभी ये लोग।
0: आपने समझने की कोशिश की कि क्यों लिख रही है? आपने पूछा उससे?
2: मैं बार बार उसको मैसेज कर रही थी कि तू बता, आई एम वरीड अबाउट यू, क्या हुआ है, टुक टुक बता क्या हुआ है। वो बोलती थी मैं कॉल करूंगी, हमेशा यही। वो कॉल ही नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा क्या था कि वो कॉल नहीं कर पा रही थी? मैम,
0: उसके जो हस्बैंड के साथ ताल्लुकात थे, शादी के सिर्फ 5 महीने हुए थे, न्यूली वेड है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप तो कज़न है, बहन है, शेयर करती होगी। इसके बाद एक्साइटेड थी कि वो भोपाल आई है, एक नए घर में आई।
2: शादी के बाद मैम उसका 15 किलो, 15 kg उसका वेट लूज़ हुआ है। वो उसके रियल भाई की शादी थी, हम सारे मिले थे शादी में, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था, शी इज़ अ न्यूली मैरिड वेड ब्राइड। और उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था, बहुत ही फीका फीका उसका चेहरा। हमने उसको पूछा भी कि तेरा इतना क्यों वेट लूज़ हो गया है, तो उसने एक बार ये मेंशन भी किया, यार खाने को मिलता ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब खाना इतना है ही नहीं। मतलब जिस हिसाब से हम लोगों के यहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे उसने पूरा अपोजिट बताया कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड खाना बनाते हैं, खाना नहीं देते ढंग से, और जब खाना ख़त्म हो जाता है तब बोलते हैं कि खाना खा लो। तो उसने काफ़ी बार बोला भी, उसने मुझे फ़ोन पे बताई थी,
0: गड़बड़ है, मुझे कुछ करना चाहिए
2: लगा। मैम वो आप रही भी नहीं है, मैम आप वो वहाँ पे ज़्यादा रही भी नहीं है, बिकॉज दिसंबर में उसकी शादी हुई है, फिर मार्च में उसके भाई की शादी थी, तो 2 बार शॉपिंग करने आई है दिल्ली में, एक एक हफ्ते के लिए रह के गई है, शॉपिंग में ही सारा टाइम था, शॉपिंग करने जा रहे हैं। फिर मार्च में शादी, मार्च के बाद फिर फूफा जी जो फादर हैं उसके, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसमें एक हफ्ते 10-15 दिन रही थी। उस
0: वक्त नहीं आप बिता पा रहे थे साथ में कि आप एक्सचेंज कर पाएँ कि उसकी ज़िंदगी में
2: सब चीज़ें बहुत जल्दी। अभी लास्ट 1 महीने से रह रही होगी वो लोग, या अच्छे से रही होगी, जो भी 1 महीने उसने मोस्टली 1 महीने में उसको इतना टॉर्चर कर दिया, इतना उसको ऐसा क्या कर दिया उसके साथ 1 महीने में, वो तो उन लोगों के यहाँ। और जो वो लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग उससे मिलने नहीं आते, अरे वो तो आ ही रही थी ना हमारे यहाँ बार बार, शादी हो रही है, फादर के साथ ये चीज़ हो गई है, तो आ ही रही थी। आप लोगों के यहाँ 1 महीने, आपने 1 महीने में उसके साथ ये सब कर दिया।
0: इनफैक्ट NDTV's मैनेजिंग एडिटर शिव अरूर ऑल्सो स्पोक टू ट्विशा शर्मा'स फादर एक्सक्लूसिवली। In this conversation, Trisha's father called her husband Samarth Singh a wolf in sheep's clothing. Let's listen in.
3: जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
4: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है, इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
3: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी, जिसमें
4: भेड़िया
3: जी
4: आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: द मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह हैज ब्लेम्ड त्विशा फॉर द पूजा पार्ट शी कंडक्टेड एट होम एज मेयरली अ शो। She alleged that Twisha had taken abortion pill on her own and later informed her husband Samarth about it. According to her, Twisha was under tremendous psychological pressure from the glamour world and she was seeing a psychiatrist and also was under medication and used to go for various counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms, Giribala says, while taking medicine. Her behavior allegedly changed drastically after her visit to New Delhi to her parents' place, remarking that young women today take extreme steps very easily. She has spoken exclusively to NDTV's Akash.
5: Ms. Singh, I want to first ask you what exactly happened that night. We want to understand your version before I ask you other questions on it.
6: Madam, we have, you know, our throats are dry just telling that how traumatic this entire experience has been. Twisha was my daughter-in-law and she has left a huge vacuum. That day we were all together, we watched TV. After that she often goes on the rooftop or outside to have a chat. 9:40 in the CCTV footage, it is visible that she is going upstairs. There has been no access between her and us, either on phone or otherwise. In fact, the last called numbers are from the mother, the parent side. They must explain what is the conversation they had.
5: Ms. Singh, where were you when she was on the terrace?
6: Give her all the resuscitation. I was in my bedroom. Obviously, it was after 10 and I retired for sleep at about 9:30.
5: So what do we see in that CCTV footage? Explain to us, ma'am, what we see. We see your husband, we see someone going up the stairs as well. Where was Twisha coming from? Because even in your press conference, while you say that this is a setback, that your daughter-in-law has died, you have also gone on to say that she destroyed you and your family. So explain to us what happened in that CCTV footage. If there is a vacuum that cannot be filled because of her demise, why do you say she destroyed your family?
6: She destroyed because now her family is, you know, they are doing like a witch hunt. They want us behind bars. She has created a vacuum, but she was the product of her own troubled personality. This is the best that I can say, because in the dead of night when she creeps upstairs, that's why we had to check the CCTV key, exactly where was she at that point. The next day after everything, then we checked and then we saw that she is going upstairs at 9:40. And because we didn't find her in the bedroom, she found that she was not responding to the phone calls. It is then immediately when we rushed upstairs and we saw that the earbuds, they were away, her phone was away and she was hanging. That was a huge tragedy for all of us. And while we try and see that she gets peace, So I think all of this is...
5: Ms. Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question. You're a former judge yourself. He is an advocate. Why is he not facing the law? Why is he not at home? Why isn't the police asking him questions? Why is he absconding, Ms. Singh? You're a former judge. Your son is an advocate. Shouldn't he be facing the questions that the law has for him?
6: Definitely he should be, and he will.
5: But so where is he today?
6: The law. His advocate also knows the law. He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies, and he will. His advocate will best guide him and us how we can proceed further.
5: But Ms. Singh, if you're saying this is not a case of dowry, this is not a case of harassment, Ms. Singh, you should be held accountable right now. Do speak to us for 5 minutes because I want to understand from you your version. We've heard from the family, but if your son is not speaking with the police, why isn't he surrendering at the moment? He should be facing the law. He should be taking questions from the investigators if he has nothing to hide, ma'am.
6: Madam, he is the one who handed over all the documents. All the seizures are from him. He has been completely cooperating till the time that they formally launched an FIR, which was not even, I mean, there was no matter to lodge an FIR. And after that, of course, because he is a citizen of India, he has the right to exhaust his constitutional remedies instead of going to jail. The Supreme Court in Umar Khalid has also said that bail is the rule and jail is an exception. Even terrorists, even UAPA criminals, all of them, they are entitled to bail. Why would he not exhaust his remedies, madam? And he would be ready to answer everything once the system is there to support him. It is he and me who will require a long-term psychiatric treatment after this entire trauma is over. I do hope you understand, and I hope you will bear with us and let us live and fight our cases, because now the case is there. We need to protect ourselves too, as any citizen.
5: But protect yourself from what, Ms. Singh? Because you're saying there has been no dowry harassment. There is no role that your family has played when it comes to Twisha's death. So why not face the law? Why stay
6: Madam,
5: away?
6: You're going around in circles.
5: Because I want an answer from you, Ms. Singh. You are a former judge yourself. There's an award of 10,000 rupees now for whoever finds your son. What do you have to say about that? His anticipatory bail plea has been cancelled, ma'am.
6: That is something which

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वी एट एनडी टीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
4: Why I say this, this could be a big story.
5: Thank you.
3: Stories that no one else had.
6: The memorial they have built is not just for Avicii.
3: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
7: इस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी का
3: moments that gave competition viral fever.
8: हबीब का गुंडा हमला किया।
9: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
10: बंगाल बचाने का वोट।
11: Fight for justice. Fight for every woman here.
3: When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This GOG selections. NDTV.
12: Size of fish, what taste of fish you like?
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
15: अरे मेरे राजा।
16: सबका राजा आर्यन मसाला।
17: Across the country, he has tracked the pulse of power. From Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
18: Economy, business.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वी एट एनडी टीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
4: Why I say this, this could be a big story.
5: Thank you.
3: Stories that no one else had.
6: The memorial they have built is not just for Avicii.
3: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
7: इस वक्त यहाँ पर अफरा-तफरी का
3: moments that gave competition viral fever.
8: हबीब का गुंडा हमला किया।
9: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
10: बंगाल बचाने का वोट।
11: Fight for justice. Fight for every woman here.
3: When it was anything

0: In other news, Supreme Court refuses to stay its earlier order on stray dogs, says public safety cannot be ignored. Aggressive dogs to be euthanized, pulls up states for failing to take sustained action.
1: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: All right, we have some breaking news coming in. NDTV has now accessed Trisha's post-mortem report, in which it says that Trisha used belt as noose. Ligature report further confirms that the suicide belt has been identified. That's the NDTV accessing Trisha's post-mortem report. Apart from that, it's also been identified as belt has been identified as the hanging instrument. Police delay in submitting belt under scanner and belt handed over only 2 days ago. I have my colleague Sikta for more on this, joining me live from Bhopal. Sikta, of course, a lot of lapses in the investigation with the belt now at the epicenter of the lapses there. Tell us more, with the investigators probing all kind of procedural lapses when it comes to Trisha Sharma's death case.
2: Rahisha, there are plenty of questions which the police needs to answer right now. Well, with me is ACP Rajneesh Kashyap, who's heading the SIT and probing the death of Trisha Sharma in Bhopal. He's with me live right now. Let's go across straight to him. Rajneesh ji, sabse pehla sawal ye ki postmortem report se abhi aap logon ke paas kya jankari hai? Preliminary report aa gayi hai, final report aa gayi hai. Trisha Sharma ki maut kaise hui? Us belt se hui hai? Apne aap ko usne hang kiya hai? Kya jankari aap hamare darshakon ko de sakte hain?
3: Jo thana Katawa Hill ke antargat jo apraadh panjibat kiya gaya hai, isme morgue inquest file hui thi. Morgue inquest ke baad jaanch par se is pe apraadh panjibat kiya gaya tha. Aur apraadh parijanon ke kathan PM report ke basis pe panjibat kiya gaya tha. PM report mein cause of death antemortem hanging tha. और यही इसी कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस जो चूँकि पीड़िता नवविवाहिता थी और शादी के 5.5 महीने के अंदर ही असामान्य परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई थी, तो इन्हीं सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तथा दहेज की मांग को देखते हुए केस पंजीबद्ध किया गया था।
2: मिस्टर काश्यप, सवाल ये उठ रहा है कि वो बेल्ट क्यों पोस्टमार्टम के दौरान या उस वक्त नहीं दिया गया जब पूरी जांच चल रही थी? आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद उस बेल्ट को सौंपा है, तो ये लैप्स है, बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस।
3: जो लाइगेचर मटेरियल है जिमनास्टिक बेल्ट, तो जिमनास्टिक बेल्ट को जो तत्कालीन आयु थे उनके द्वारा FSL टीम का इंस्पेक्शन हुआ था। इंस्पेक्शन के बाद FSL टीम द्वारा उस बेल्ट का भी इंस्पेक्शन किया गया था, करने के बाद आयु को हैंडओवर कर दिया गया था। अब आयु ने नेक्स्ट डे उसको सबमिट किया है।
2: मानते लैप्स हुआ
3: इस संबंध में? चूंकि कई बार
2: मिलान उसी वक्त होना चाहिए था ना, मैच होना चाहिए था मार्क्स से और उस बेल्ट से।
3: उसमें उसकी रिपोर्ट भी आ गई लाइगेचर की, और वो कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो जाती है, और कई बार तो इस संबंध में जो तत्कालीन आयोग है तो उनको उसके संबंध में उनका वो भूमिका भी देखी जाएगी कि क्या था कारण कि वो उस समय तस समय नहीं दे पाए और बाकी बाद में उनको द्वारा दिया गया।
2: तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी की आत्महत्या भी अगर रिपोर्ट की जा रही है तो उसने आत्महत्या कैसे की, वो मटीरियल क्यों नहीं बरामद हुआ, अगर बरामद हुआ तो सौंपा क्यों नहीं गया, क्योंकि मिलान होना है, मैच होना है जो शरीर पर निशान है उसके, तो ये तो बहुत बड़ा लैप्स है। आप मान रहे हैं, हाँ आप कह रहे हैं कि जांच हो रही है, प्रोब हो रही है, लेकिन लैप्स भी तो है
3: इस मामले में। जो मेरी कंसर्निंग डॉक्टर से बात हुई थी तो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया था। जो PM रिपोर्ट जो है उसमें भी कॉज ऑफ डेथ एज इट इज है जो प्राइमरी रिपोर्ट में है, और रहा ये बेल्ट को, तो बेल्ट को लेकर भी रिपोर्ट अभी आ गई है लाइगेचर मटेरियल।
2: शरीर पर जो चोट के निशान है उसके बारे में अभी आप क्या बता सकते हैं?
3: जो PM रिपोर्ट है, जो प्राइमरी PM रिपोर्ट है, इसका उल्लेख है, इसको हम FIR में भी हम लोगों ने बताया कि मल्टीपल इंजरीज हैं बॉडी में, और जिनका नेचर सिंपल इन नेचर है, और सिंपल इन नेचर होने के कारण इस संबंध में डॉक्टर से डिटेल क्वेरी भी करवाई।
2: क्या ये कह सकते हैं कि अगर त्रिशा ने आत्महत्या की है तो उससे पहले पति पत्नी में या किसी और के साथ मारपीट हुई है, निशान आए कैसे, इस बारे में कुछ क्या बात बता सकते?
3: इस बारे में एम्स भोपाल से डिटेल में क्वेरी की गई है कि ये जो चोट है, चोट का टाइप क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है, इनका नेचर क्या है, तो इस संबंध में जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें नेचर इनका सिंपल बताया गया है। और नो डाउट, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 490 जो पहला है जो अभी VNS में 80 हो गया है, जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना से रिलेटेड है, तो ये धाराएँ भी लगाई हुई हैं FIR में। इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए, प्रताड़ना को देखते हुए, धाराएँ भी लगाई गई हैं FIR के अंदर।
2: जो ट्रिशा शर्मा की मदर इन लॉ ने आरोप लगाया है कि ट्रिशा

0: एडिक्शन की शिकार थी, ड्रग एडिक्ट थी, तो पोस्टमार्टम में क्या कोई इस तरह का ड्रग अब्यूज़ के निशान मिले हैं क्या?
1: इस संबंध में हमारे द्वारा हमसे क्वेरी की गई है और उसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और वहाँ ड्रग एडिक्शन का
0: अभी मालूम नहीं है।
1: ड्रग एडिक्शन जो प्राइमरी रिपोर्ट थी तो उसमें ऐसा ड्रग एडिक्शन संबंधी कोई भी एविडेंस नहीं थे और वहाँ ड्रग एडिक्शन का सवाल, तो इस संबंध में चूंकि अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, SIT गठित है, तो जितने भी जाँच में जो आरोप प्रत्यारोप या जो भी नए तथ्य एविडेंस या साक्ष्य आते जाएंगे, हम लोग बिल्कुल उस पर जाँच करके उसको शामिल करेंगे और जाँच का दायरा भी बढ़ाएंगे।
0: डॉक्टर राजेश, ये भी बताइए कि जो इस पूरे मामले में ट्विशा के परिवार ने, उसके माता पिता ने ट्विशा के पति को मुख्य अभियुक्त बनाया है, जो अभी फरार है, जिसके लिए आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, मैंने सुना है SIT की 6 टीमें लगी हुई हैं, ऐसा कहाँ वो शख्स गायब हो गया कि आपकी टीम को पता ही नहीं चल रहा, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ?
1: बिल्कुल, इसकी मामले की गंभीरता को देखती हुई पुलिस कमिश्नर भोपाल महोदय द्वारा इसमें टीम भी बनाई गई, हम लोगों द्वारा टीम की संख्या भी बढ़ा दी गई है और बिल्कुल इसमें इनाम भी घोषित करवाया गया है फरार आरोपी के विरुद्ध, और हमारी टीमों द्वारा ह्यूमन एंड टेक्निकल, साइबर और जितने भी लोग हैं, हम लोग इसमें बिल्कुल जुटे हुए हैं और तत्पर हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे द्वारा अपने भोपाल,
0: आपको कोई जानकारी नहीं है इस वक्त ट्विशा शर्मा का पति कहाँ है?
1: बिल्कुल, टीमें लगी हुई है, जैसे हमें जानकारी होगी तो हम लोग अरेस्ट करेंगे और इसके पासपोर्ट के संबंध में भी हमारे द्वारा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आवश्यक लुकआउट सर्कुलर के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए भी पत्राचार किया गया है और बिल्कुल जैसे भी होगा तो हम उसको।
0: मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से बाहर है, हालांकि आप बता रहे हैं कि उसके जो पासपोर्ट है उसको एक तरह से उस पर वो आगे देश से बाहर ना निकले, उस पर कार्रवाई के लिए आप लोगों ने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल में है, कोई जानकारी, कोई क्लू?
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि कोई क्लू होता तो आज वो अरेस्ट होकर जेल में होता, हम लोग इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और लगे हुए टीमें भी लगी हुई हैं कि एक भी कोई भी इसमें ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है।
0: तो ये ऐसा लग रहा है कि वो क्रिमिनल लॉयर रहे हैं तो पुलिस से 2 कदम आगे ही चल रहे हैं।
1: ये चूंकि वो अपराधी है और आपराधिक उसने इतना गंभीर अपराध किया है,
0: समझ है कि आप लोगों से कैसे बचा जाए
1: और है, तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं, रहा इसका प्रश्न कि वो क्रिमिनल लायक है और ये है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस में कि आप क्या हो क्या नहीं हो, हमारा तो उद्देश्य है कि जो भी हमारे केस का आरोपी है तो उसको अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से करना कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके।
0: जी, एक और मामला जो लगातार परिवार उठा रहा है, जिस पर एक समझ जरूरी भी है, डाउरी हैरेसमेंट का मामला बनता है क्योंकि 6 महीने भी नहीं हुए इस शादी को, ऐसे में एंटिसिपेटरी बेल की दलील देकर जो सास हैं त्विशा शर्मा की वो छूट जाती हैं, तो क्या ये दलील वहाँ पर वाजिब ठहरती है, उस पर भी परिवार सवाल उठा रहा है?
1: चूँकि जो एंटिसिपेटरी बेल है ये माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है तो इस पर भी कोई टिका टिप्पणी उचित नहीं होगी, न्यायालय ने अपने तर्कों के आधार पर दिया है, इसके लिए जो अपर कोर्ट है तो उस पर बिल्कुल अपील करके उसको हम लोग प्रयास करेंगे, तो न्यायालय का ये विषय है तो इस पर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की जाएगी।
0: तो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जो सेकंड पोस्टमार्टम की जो बात कही जा रही है, अड़ंगा पुलिस लगा रही है, पीड़ित परिवार यही कह रहा है, उसको क्या जवाब देंगे आप? सेकंड पोस्टमार्टम आप लोग क्यों नहीं करवा रहे? आप ये भी हम सब जानते हैं कि बॉडी ज़्यादा दिन तक रखी गई तो डिकम्पोज हो जाए।
1: बॉडी के लिए हम लोगों के द्वारा ही प्रयास किया गया है और इस संबंध में हम प्रबंधन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजी से भी संपर्क किया गया है, इस कारण बॉडी को अभी जितनी भी बेस्ट फैसिलिटी है एम्स के अंदर तो उसके तहत उसको प्रिजर्व करने का प्रयास किया जा रहा है और सेकेंड पोस्टमार्टम की एक विधिक प्रोसीजर होती है, चूँकि वो मध्य प्रदेश के बाहर अदर स्टेट में पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सक्षम न्यायालय है उसकी अनुमति के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे जो विधिक सलाहकार हैं जिला,
0: ये पुलिस के डोमेन में नहीं आता है कि आप दूसरा पोस्टमार्टम उनको एक तरह से आश्वस्त करने की करा पाए?
1: पुलिस द्वारा एम्स भोपाल में और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके तहत 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा और विधिवत वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम और परिजनों की उपस्थिति में और जो यहाँ पे तहसीलदार थे उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और जो हमारी जो FIR है उसको सपोर्ट भी कर रही है और वहाँ सेकंड PM का, तो सेकंड PM के संबंध में जो निर्णय है वो सक्षम न्यायालय ही लेगा और हम लोग इस संबंध में हमारे जो विधिक अभिमत उससे राय भी ले रहे हैं और न्यायालय के संबंध में इस बात को रखेंगे।
0: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनीश कश्यप, जो बात कर रहे थे दैट वॉज SIT हेड हु इज हेडिंग दिस होल प्रोब फॉर ट्विशा शर्माज डेथ एंड दैट्स ऑल ही हैज टू से राइट नाउ, ही डजंट नो वेदर हस्बैंड इज एब्सकॉन्डिंग एंड सेकंड PM रिपोर्ट पुलिस इज नॉट गोइंग फॉर इट, द फैमिली हैज टू मूव ऑन देयर ओन एंड गेट दैट जुडिशियल ऑर्डर।
2: Right, absolutely. Thanks very much, Sikta, for joining us from Ground Zero with, of course, the belt, which is now at the epicenter of the investigation because the investigating officer did not produce that belt. But let's tell you more about the lapses which have emerged in the ongoing investigation. First up, belt not shown during post-mortem, and the belt has emerged as the key evidence which is missing at a very crucial stage. Now, it was a nylon belt which was allegedly used by Twisha to hang herself. I mean, of course, the claims of suicide is being made by Twisha's in-laws. The belt seized was not produced before AIIMS doctors in Bhopal, and that is why Twisha's parents want the case to be shifted to Delhi and, of course, are demanding a second post-mortem. There's also a huge confusion regarding the belt versus ligature marks on the neck, which has now not been compared because the belt was not produced for the post-mortem. Hence, there can be no comparison on the various kind of marks on Twisha's body and the belt, which was used allegedly to hang herself. There have been two parallel marks on neck, but no belt examined. Hence, there has been a major lapse in comparing whether the belt was used for, if the belt was, of course, used for any kind of lapses there. But let's now tell you more about the other lapses which have perhaps emerged. First up, the belt was handed over forensics after the post-mortem. So the belt was handed over to the forensics after the post-mortem was completed. Twisha's age was mentioned as 31 and 33 in the same FIR. So there's, of course, been a lot of mix-ups in the FIR as well. FIR states, body handed over to family, but body has been in the mortuary for over 7 days, and Twisha's own parents have not been able to access that. Husband Samarth, who's still absconding, and there's of course been a rupees 10,000 bounty on Samarth as well. But let's tell you more about what else is happening in this very heart-wrenching case. In the heart of Bhopal, the mysterious death of young Twisha Sharma has sparked outrage and serious doubts over whether justice is being served. What began as a reported case of suicide by hanging is now raising alarming questions about evidence handling as well, procedural violations and possible influence peddling. As fresh revelations emerge in this very story, our next report takes you through all the possible lapses that took place in the case. Take a look.
3: The probe into the death of Twisha Sharma is now facing tough questions, not just over what happened inside her Bhopal home, but also over how the investigation itself was handled. According to AIIMS Bhopal's post-mortem report, the belt allegedly used in the hanging was not brought by the investigating officer during the autopsy. Without the alleged ligature material, doctors could not compare the belt with the marks found on Twisha's neck, a key forensic procedure in suspected hanging cases. Twisha's family alleges months of mental and physical abuse, dowry harassment, and attempts to weaken the investigation through influence. The special investigation team heading the probe has now admitted the lapse. Police have acknowledged that the belt had been seized from the spot, but was not presented during the autopsy process by the investigating officer. Police claim the belt was later handed over to the Forensic Science Laboratory and eventually deposited at AIIMS Bhopal. But the delay has only intensified questions over evidence preservation and possible tampering. Investigators are also under scanner over another crucial aspect. Twisha's body was allegedly moved to the hospital before police were called to the scene. The SIT says CCTV footage from the residence is now being retrieved to establish the sequence of events. Meanwhile, Twisha's family has accused her husband's mother, retired Judge Giribala Singh, of trying to influence the narrative by claiming Twisha suffered from psychiatric issues and drug addiction. Police, however, say there is no evidence so far to support those claims. With every new revelation, the focus is now shifting from just the circumstances of Twisha Sharma's death to whether critical procedural lapses compromise the investigation itself. As demands for justice grow louder across the country, the spotlight is firmly on the SIT, and whether the truth in the Tushar Sharma case can still be fully uncovered. Bureau Report, NDTV.
2: Well, CCTV video has now surfaced in the mysterious death case of model and actor Tushar Sharma in Bhopal. The footage shows Tushar climbing the stairs of her marital home shortly before her death. Moments later, the video captures frantic attempts by family members, including her husband, Samarth Singh, to revive her through CPR. That's before carrying her body downstairs. Here's a detailed report on what happened the moments before her death.
4: This is 33-year-old Tushar Sharma climbing towards the terrace of her house in Bhopal's Katara Hills area. Shortly after, the video shows at least three men, including her husband Samarth Singh, attempting CPR on Tushar. The attempts appear unsuccessful before her body is carried downstairs. Tushar's mother-in-law, retired Judge Giribala Singh, is also seen in the footage. Tushar was found dead at her marital home on the 12th of May.
5: We opened that, usne body aisa open kiya and I tried to remove this thing. To jaise remove kiya, wahi ka wahi CPR diya, wahi ka wahi push kiya, Manu ko, jo bagal mein beta hai, usko bulaya, gate mein daud ke kholi, gaadi nikali, sister ki gaadi bhi nikali, because kya hai, utne bade person ko lana, do seedhi paar karte huye, seedhi ka ghumao itne rehte hai, it is so difficult, it's so tragic, or it's all between all of this, हमें क्रिमिनल बताया जा रहा है।
4: According to the preliminary post-mortem report from AIIMS Bhopal, the cause of death appears to be hanging. Police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide against Samarth Singh and his mother. While Giribala Singh has secured anticipatory bail, Samarth Singh remains absconding. Police say efforts are underway to trace him. The case took another dramatic turn after contents of a bail application filed on behalf of Samarth Singh surfaced publicly. The plea alleged that Tushar was battling a drug addiction and undergoing psychiatric treatment and counselling. The application further claimed that Tushar had travelled to Delhi in April and remained untraceable for several hours before reaching her parents' home. With Samarth Singh still on the run and the special investigation team intensifying its probe, investigators are expected to closely examine the newly surfaced video, digital evidence and statements from family members in the days ahead. Bureau Report, NDTV.
2: Well, after the shocking death of Tushar Sharma, efforts are on to trace her absconding husband, Samarth Singh. He's a Bhopal-based lawyer. Tushar's husband has been at large after an FIR was lodged over dowry death. The Bhopal police have now launched a manhunt and the Deputy Commissioner of Police has announced a reward of Rs 10,000 for any information on Samarth Singh, who is, as we speak, absconding. In fact, not just that, a lookout circular has also been issued against the husband. In the latest, NDTV has accessed last CCTV video of Tushar. In this video, Tushar was seen heading to the terrace, after which panic unfolded inside the house. Two men attempted CPR in quick succession as family members rushed in and out of the room. The mother-in-law, and that's the video playing out here, the mother-in-law briefly saw Tushar before going downstairs, and shortly after, three men were seen carrying Tushar downstairs from the terrace area. The focus right now, after, of course, the unfortunate death of Tushar Sharma, is on her husband, who is currently absconding. Here's a report filed by my colleague Sikta Dio.
0: तो हम इस वक्त भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद हैं, जहां पर ट्विशा का ससुराल था. ये वो मकान है जहां पर ट्विशा की मौत हुई है और उसके ससुराल वाले ये दावा कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है. इसी मकान की छत पर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. ये दावा ससुराल वालों का है. हालांकि ट्विशा के परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कई सवाल उठाए. एक सवाल ये भी है कि जब उन्होंने ट्विशा को फांसी पर लटका पाया तो उसे उसमें फंदे से उतारने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया. तो एक रियलिटी चेक की भी अब बात हो रही है, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ट्विशा का जो परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कटारा हिल्स की पुलिस चौकी है वो इस घर से कुछ ही कदम दूर है. यानी कि अगर आप इस घर से निकलेंगे, जैसा कि हमारा ये कैमरा भी जा रहा है आगे, इसके 10 से लेके 100 कदम आगे, ये पुलिस चौकी है, तो यानी कि आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको मदद चाहिए, तो कोई एक शख्स इस घर से निकलकर दौड़कर इस पुलिस चौकी

0: तक पहुंच सकता है और मदद मांग सकता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो देखिए हमारे कैमरामैन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे, और मैं बताऊं आपको कि 100 कदम भी नहीं लगेंगे आपको इस पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए। मेरे पीछे यहाँ पर, अगर कमलकांत आप पीछे मुड़कर दिखाएं, तो यो ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए। तो परिवार ये सवाल उठा रहा कि अगर इतने पड़ोस में एक पुलिस चौकी थी, यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, और जब पति ने, सास ने देखा कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रियलिटी चेक है, कितने कदम लगे मुझे, करीब 100 कदम, और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कॉन्स्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए, और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। तो ये रियलिटी चेक कटारा हिल से कि आखिर ट्विशा के ससुराल वालों ने जब उसे फांसी पर लटके देखा, उसे फंदा बनाकर लटका हुआ देखा, तो क्यों नहीं वो इस चौकी तक आए और मदद मांगने की कोशिश की, क्यों नहीं इनको जवाबदेह बनाकर इंसिस्ट किया कि आप तुरंत इस मामले में एक FIR, एक पुलिस रिपोर्ट बनाएं कि ट्विशा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है।
1: Well, the next big question right now is, where is Twisha's husband? Where is Samarth Singh? Let's tell you more about who he is actually. Who is Samarth Singh, the absconding husband? Twisha's husband, of course, currently absconding right now. Apart from that, he is an independent litigator and a legal advisor as well. He was practicing law. He's a practicing lawyer since September 2018. Apart from that, he's practiced in various courts, to name some: Bhopal,

0: your son, let me ask you that pointed question. You're a former judge yourself. He is an advocate. Why is he not facing the law? Why is he not at home? Why isn't the police asking him questions? Why is he absconding, Ms. Singh? You're a former judge. Your son is an advocate. Shouldn't he be facing the questions that the law has for him?
1: Definitely he should be, and he will.
2: All right, my colleague Sikta Deo has spoken with Twisha's mother and father, who have two core demands right now: that the probe should be fair and that there should be a second post-mortem. Take a listen.
3: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
4: नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे. 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि आप, अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
3: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
5: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का, कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसी क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी. ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम
3: करना. जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे क्या आप क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
4: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे, कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
5: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था. हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
4: पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
3: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
4: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी. तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक.
3: निकलना चाहती थी?
4: हाँ जी.
3: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी?
5: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
4: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे.
3: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है. और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है. आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से.
4: जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो. ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है. तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक. तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है. तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal

0: प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गाड़ी को पूर्ण करिए, कुछ अल्टरनेटिव मेजर बताए, जो लेता था पॉजिटिव किया जाए, कुछ आप ऐसा अमल कर रहे हैं?
1: बड़े करियर के इसमें जहाँ पे आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो और आपकी डेली की रूटीन सेम है, वहाँ पे कुछ पॉसिबल है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है।
0: फ्यूल कर्टेलमेंट करेंगे क्योंकि दूसरी बार हो गया हफ्ते में प्राइस बढ़ा है, ऐसा होगा कि कम गाड़ी इस्तेमाल करेंगे?
1: नीड है वो तो की वजह से जाना, वो तो जाना ही जाना है, ऑलरेडी पूरी किए हुए, पूरी फैमिली कटी है।
0: So they think that certain things are practical, but certain things they can't do because already they have pooled in, because the whole family is going, because they have to go in one particular direction. So they have decided to go together. So the family that lives together, they will be happily going together. That's what actually the formula they are applying. But yes, they are saying that they may be facing not many problems because of the price hike already. This has drilled hole in their pocket, so it's going to create a lot many problems for them. But yes, people somewhere also realize the government can't do much because this is the West Asian conflict that's going on because of its state of foremost disruption is continuing. In such a situation, it is not easy for them to control the crude oil prices, and already
2: all right.
0: The ripple effect is being felt across the country, and they're also feeling the same problem right now here. And right now, we have been interacting with them. They're saying the certain measures they are taking, they're trying to conserve oil also. I was talking to one of the legislators also. He has switched over to the bicycle bike.
2: All right, Pradeep.
0: With the members in this particular constituency, he was doing that.
2: All right, Pradeep, getting us a ground report from Jammu, speaking to the consumers, they're saying carpooling is one of the options, but certainly there is going to be an impact in the common man's life. Shubhang joins us now from Delhi NCR in Ghaziabad, not very far from India's capital. Shubhang, what are you picking up? Are you also speaking to consumers with similar kind of response?
3: Well, definitely, Ritya, there's a slight change in my location. Well, currently, I'm reporting from Delhi's Patparganj area. And this is, in fact, a third or fourth day now when the prices of petrol and diesel have slightly increased now. Showing you the visuals, first of all, the petrol prices right now currently stands at 98.68 rupees and diesel prices are at 91.62 rupees. Well, similarly, we have been talking to the commuters on daily basis and they have mixed reactions. Some of them are agitated that the prices have been increasing, and some of them have been saying that this is important because of the global crisis that they see. Well, currently, I'm also reporting from Patparganj area. We'll be talking. Kya naam hai aapka?
4: Ansh.
3: Ansh, aaj lagataar 4 se 5 din mein dusri baar aisa hua hai ki jo daam hai wo badh gaye hain. Ab yahan par petrol ke jo daam hai wo kafi had tak badh gaye hain pehle ke muqable. To aap kya se dekhte hain isko? Mushkil ho rahi hai kuch?
4: हाँ, मुश्किल हो रही है. मतलब जो घर में फाइनेंशियल कंडीशन है वैसी, जो मिडिल क्लास बंदे हैं उनके लिए वैसी लो है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है पेट्रोल ऐसे बढ़ना.
3: आप और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे. भाई सब, क्या नाम है आपका?
5: पीयूष.
3: पीयूष जी, तो लगातार देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या जेब पे नुकसान हो रहा है?
5: जी बिल्कुल, जेब पे तो नुकसान हो ही रहा है. और रही बात पेट्रोल डीजल की, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. वो जब बाहर से महंगा मिल रहा तो हमारे जो बड़े हैं वो भी महंगा करके बेचे.
3: देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने वाहनों से कम चले, तो वो हो पा रहा है? उसकी कोशिश हो पा रही है?
5: उसकी कोशिश हो पा रही है, पर टाइम की वो है ना मेन. अब जो पब्लिक व्हीकल है, जैसे मान लीजिए मेट्रो है, बस है, वो लेट पहुँचाती है. ठीक है, तो जल्दी पहुँचने के लिए क्या करेगा इंसान, या स्कूटी या कार से ही जाएगा फिर?
3: जरूरी होता तो निकलना.
5: जी जी जी जी बिल्कुल.
3: चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे. भाई साहब, क्या नाम है आपका?
6: नावेद.
3: नावेद जी, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कितनी मुश्किल हो रही है?
6: बहुत मुश्किल हो रही है सर, और
3: रोज आने जाने में मुश्किल बढ़ रही है.
6: जी
3: भाई साहब, आपका क्या नाम है?
7: मेरा मदन. नाम
3: क्या नाम है भाई?
7: मदन. मदन.
3: मदन जी, लगातार जो ये प्राइसेस है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के, मुश्किल बढ़ती जा रही है या फिर सब कुछ ठीक है?
7: मोदी जी हैं, सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. मोदी जी बाहर सात समंदर पार गए हैं जनता के लिए, तो गए, इससे बड़ी बात क्या? ये महंगाई कुछ नहीं है.
3: लेकिन अगर बढ़ रही है गरीबों के लिए, मुश्किल बढ़ रही है, तो भी कुछ नहीं है?
7: तो जाहिर सी बात है, लॉकडाउन में जब जेल लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है.
3: You see, there are mixed reactions. Some of them are agitated that it is difficult for them because the prices have been increasing. And as you can see, that some of them are in fact saying that because of the global crisis, the situation is like that, and that is fine. Whatever the Prime Minister says, they are okay with that. Some of them do have such reactions. Back to
2: all right,
3: you.
2: All right. Shubhang getting us this ground report from national capital Delhi. Now, I'll request all my reporters, including Ritik and Raman, to stay on with us. Because now we tell you how this fuel price hike is likely to impact.

0: Okay. So there are mixed, you know, reactions we are also getting. So these are the reactions we are getting on ground here in Kolkata. Back to you.
1: All right, Ritik, getting us a ground report from Kolkata, how the consumers are reacting to this price hike. We will go across to Raman in Patna as well. But before that, let's tell you how much hike do the oil companies, the OMCs, really require? And these are the details that we are picking up here on Nationwide at 6. And this is regarding the price hike. The OMCs are losing to the tune of 1,600 crore daily. Remember, viewers, the oil companies were taking a big hit, big losses being made, and that was not being impacted by the viewers. It was being delayed by the government. That's the government version coming in. But the OMCs have been losing at least 3 per litre hike, not enough. That's the version of the government and the OMCs that is coming in. And that's why a 90 paisa increase today. Petrol may need 15 to 18 rupees more hike. That is the kind of response that we are looking at OMCs if we need some kind of a you know, pressure to be relaxed. Diesel may need 30 to 35 rupees more hike to sustain this kind of pressure continuously coming in for the West Asia crisis. The current hike covers only a fraction of the losses. So continuously, there's been this loss that is coming in. But this is how much hike do oil companies really need? And we told you about the details and the version of the oil companies that is coming in. Will we see more price hike? Well, NDTV will be keeping this and watching this very closely. Let's get you Raman from Patna now. Raman, what are you picking up from the common viewers out there? You know, the government's version is one, but the consumer finally bears the brunt of this. What are people in Bihar telling you?
2: Well, Aditya, I want to show you the visuals right here in Patna at a fuel pump, which is just beside the Vidhan Sabha. And people are here in rush, and they are in fear of a fuel price hiking just twice in a week. And I want to show you the fuel price in Patna. It is almost around 110 per litre for petrol and 96 per litre for diesel. And this is the second time and the fuel prices is hike under a week, and this is the situation right now at a fuel station. And people are in very hurry, that they are in fear that the fuel prices may get higher in few days, upcoming days. I want to talk with the people out here. Sir, kya lag raha hai tel ke dam jis tarike se badh rahe hain, kya kehna chahenge?
3: कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्या कीजिएगा, जो ऐसा पोजीशन है तो बढ़वे करेगा
2: क्या, इससे आपके बजट पे भी फर्क पड़ता है?
3: कोई बजट में फेल नहीं होगा, सब जो चल रहा है उतना चलता ही रहे।
2: कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दो बार बढ़ गए हैं,
4: दाम बढ़ गए हैं, इमरजेंसी में आदमी है, कहूँ हॉस्पिटल जाना है तो आदमी के गाड़ी में तेल खत्म हो रहा है तो बोतल में तेल नहीं मिल पा रहा है। गाड़ी कम से कम 3 किलोमीटर से धकेल के भाई हमारा लाए हैं, जोड़े साथ ये हेल्प किए हैं।
2: तो सी, दिस इज द प्रॉब्लम राइट हियर इन पटना, दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूल कंजम्पशन, एंड वी हैव सम मोर पीपल आउट हियर। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोग को, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, दो बार दाम बढ़ गए एक बीच में?
5: अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की जैसी विदेश रणनीति हो उस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
2: क्या आपके बजट पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है?
5: जी बिल्कुल, जेब पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। रेट बढ़ने से हर चीज पे असर पड़ेगी।
2: दिस इज द सिचुएशन दैट द पीपल आर हियर इज सेइंग दैट एवरीथिंग विल अफेक्टेड बाय द फ्यूल प्राइसेस हाइकिंग ऑन ट्वाइस इन अ वीक अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर इन फियर, एंड इट विल डायरेक्टली डेफिनेटली इफेक्ट ऑन द अदर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट, एंड दैट इज व्हाई द ऑयल कंपनीज हैड डिसाइडेड to hike the fuel price in India just twice in a...
1: All right, Raman, thank you very much for joining us. Let's cut across live to Norway, where Prime Minister Narendra Modi is speaking at the India-Nordic Summit.
6: इस समिट का आयोजन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी नॉर्डिक लीडर्स का भी यहां स्वागत करता हूं। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है, और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को

0: अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। इस मजबूत नींव पर अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। योर एक्सलेंसी, वैसे तो हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्द भी हमारी नेचुरल पार्टनरशिप को रेखांकित करने के लिए काफी होता है। आज मैंने कई बार संबंध, इस संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आइए हम अपने बीच संबंध को हर क्षेत्र में प्रगाढ़ करें और इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक मॉडल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यूनस फॉर कन्वीनिंग दिस मीटिंग टुडे। ऑल ऑफ अस स्टैंडिंग हियर ऑन द स्टेज बिलीव इन अ रूल बेस्ड world order, and unfortunately the old world order is changing rapidly and it's not going in the right direction, and therefore it is even more important than before that partners who really believes in democracy actually work together, and this is exactly what we have been.
2: All right, that was Prime Minister Narendra Modi speaking at the India Nordic Summit, but that and a lot more after this short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
3: सो मेनी अटैक्स,
2: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War-struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France, in Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Iskandar.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom, only on NDTV.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
11: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
12: So I really love the channel. I saw Shiv's

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
9: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
10: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
11: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
12: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
13: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
1: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
14: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
15: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: Check the audio, higher end, check the audio.
6: Let's do it, let's start.
16: Big news that we're breaking first here on NDTV.
17: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
16: We've got a picture of the letter.
18: The breaking story, we're jumping straight into it.
19: They do not want to be part of an experiment.
16: Show around and then come to me at the Nehru Stadium in Chennai.
5: Unconditional support.
17: Crime killer of TVK is here with us.
4: We've got Mr. Dinakaran.

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचेर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचेर झोल with रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
9: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
10: ইলিগ্যাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
11: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
12: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
13: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
14: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
15: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
16: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: is being settled once and for all.
1: They have got a few fantastic companies which they have built over the years, and they are completely aligned with India growth story, India infrastructure build, and they are very critical to the economy of India. So I think it is a good news for Indian economy and Indian capital markets as well that this matter is being put to rest and their name has been cleared.
2: Where is Twisha Sharma's husband? 7 days since the 33-year-old Delhi NCR native died a mysterious death in her in-laws' home in Bhopal, Twisha's husband, Samarth Singh, remains on the run. Nobody knows where he is, or they tell us they don't know where he is. Just a day after his bail plea was denied yesterday, now a lookout notice has been issued against Twisha's husband. 7 days. His mother is a retired judge, and yet the legal machinery and the law and order machinery in Madhya Pradesh wants us to believe that they have no idea where the husband of Twisha Sharma is. The police fear he may attempt to flee the country. Six special investigative teams have been formed to locate the missing husband. The Bhopal police have also announced a reward of, this is not a joke, 10,000 rupees for information leading to his arrest. Meanwhile, NDTV has accessed the FIR details filed in the Twisha death case. Charges against the accused are cruelty against a woman by the husband, abetment to suicide, receiving or demanding dowry, and dowry death. Those are the sections under which they have been charged at this point of time. Now, the families of both Twisha and Samarth have made big claims against each other. And NDTV would like to acknowledge right now that there is no media trial here on NDTV. We take both sides, we report on the departmental proceedings and the investigation, and we reflect what the two families are saying about each other. For example, the mother of Twisha versus the mother-in-law. Take a look.
3: वो बहुत तमीज लड़का निकला मैंने मैंने बहुत इज्जत की हर बार उसको फोन करती थी कभी वो मेरा फोन नहीं उठाता तो
4: वो हत्यारा है
3: वो हत्यारा है तो मैं यही बोलूंगी हत्यारा है
5: He is the one who handed over all the documents, all the seizures are from him. He has been completely cooperating till the time that they formally launched an FIR, which was not even, I mean, there was no matter to lodge an FIR. And after that, of course, because he is a citizen of India, he has the right to exhaust his constitutional remedies instead of going to jail.
6: और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे आपको जो करना है धरना प्रदर्शन बट गिव हर द पीस ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर
3: वो बोल रही है कि ये हम लोग है ना पैसे की रात कल मैंने उसका सुना था हम इस तरह से करेंगे हमें वापस पैसा चाहिए हमारे पैसा नहीं चाहिए हमें न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए वो कल उन्होंने बोला है इस तरह से कर रहे हैं कि बेटी को यहाँ पे छोड़ यहाँ पे इतने दिन रख रहे हैं इनको क्या चाहिए बाप पैसे के लिए उन्होंने कुछ बोला आपने भी शायद सुना होगा वो टाइम पे हमें और पैसे ले लो लेकिन मेरी बेटी को न्याय दो वो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं वो हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो यदि आप अब है ना तुषा को भी बोला मेरे से भी ये वाली बात बोली थी या आप इसको ले आओगे लेके जाओगे तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा ना कोई इसको लेने आएगा कोई समर सिंह को जेल होनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए गिरीवाला सिंह को भी क्योंकि उन्होंने भी मेंटली टॉर्चर हर एक बात पे रोक टोक हर एक बात पे रोक टोक मेरे से बात होती थी उसकी तो मैं उसको समझाती थी एक माँ कभी भी घर तोड़वाना नहीं चाहिए जबकि 5 महीने हुए शादी को
5: यू नो आवर थ्रोट्स आर ड्राई जस्ट टेलिंग दैट हाउ ट्रॉमेटिक दिस एंटायर एक्सपीरियंस हैज बीन त्विशा वॉज माई डॉटर इन लॉ एंड शी हैज लेफ्ट अ ह्यूज वैक्यूम दैट डे वी वर ऑल टुगेदर वी वॉच टीवी After that, she often goes on the rooftop or outside to have a chat. 9:40 in the CCTV footage, it is visible that she is going upstairs. There has been no access between her and us, either on phone or otherwise. In fact, the last called numbers are from the mother, the parent's side. They must explain what is the conversation they had. Now, her family is, you know, they are doing like a witch hunt. They want us behind bars. She has